0: Du lytter til Radio Abkirvas på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Musicgi, Sochgi aur Aapki. Aapki Avaz. Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ ला

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मुहम्मद इस्लाम

0: मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए।
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा, बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
3: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
2: والطور وكتاب مسطور।
3: कोह तूर की कसम और किताब की जो लिखी हुई है।
2: في رق منشور।
3: कुशादा औराक में।
2: والبيت المعمور।
3: और आबाद घर की।
2: والسقف المرفوع।
3: और ऊंची छत की।
2: والبحر المسجور।
3: और उबलते हुए दरिया की।
2: إن عذاب ربك لواقع।
3: कि तुम्हारे परवरदिगार का अजाब वाक होकर रहेगा।
2: ما له من دافع।
3: और उसको कोई रोक नहीं सकेगा।
2: يوم تمور السماء مورا।
3: जिस दिन आसमान लरजने लगे कपकपाकर।
2: وتسير الجبال سيرا।
3: और पहाड़ उड़ने लगे ऊन होकर।
2: فويل يومئذ للمكذبين।
3: उस दिन झुटलाने वालों के लिए खराबी है।
2: الذين هم في خوض يلعبون।
3: जो खौज बातिल में पड़े खेल रहे हैं।
2: يوم يدعون الى نار جهنم دعا।
3: जिस दिन उनको आतिश जहन्नम की तरफ धकेल धकेल कर ले जाएंगे।
2: هذه النار التي كنتم بها تكذبون।
3: यही वो जहन्नम है जिसको तुम झूठ समझते थे।
2: افسحر هذا ام انتم لا تبصرون।
3: तो क्या ये जादू है या तुमको नजर ही नहीं आता।

0: ऐसे पॉइंट्स थे जो मैं समझता हूं कि बताता है कि जो इस वक्त सियासी माहौल है डेनमार्क का, हाँ वो पार्लियामेंट नेशनल असेंबली का हो या वो कोपेनहेगन असेंबली का हो या वो बकाया जो टाउन हॉल्स हैं उनमें हो, तो एक तो मुसलमानों के हवाले से एक लहर जो है, जो एक सख्ती की लहर जो है, जो चल रही है, वो हमने कोपेनहेगन असेंबली की जो जो मीटिंग थी उसमें भी उसको पाया। उसमें सबसे पहली बात यह है कि अभी मैं कुछ ही देर में एक क्लिप लगाने जा रहा हूँ उस मीटिंग का, कि अभी भी इनकी कोशिश ये है। आपको पता है कि इन्होंने कोपेनहेगन कम्यून के जितने भी लोकेल हैं, जितने भी उनकी जगह हैं, उसमें उन्होंने जिससे कहते हैं कि मर्द और औरत इकट्ठे जिसमें नहीं बैठे, तो उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है, जिस वजह से अब फिने ऑप्टिल्स फिर ऑप्टिल क्वीन स्विमिंग जो है, जब ऐसी तंजीमें होती हैं जो इन कम्यून के स्विम हेल इस्तेमाल करती हैं जिसमें सिर्फ लेडीज होती हैं, उसको इन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया है। इसी तरह आपको पता है कि जो ईद की नमाज पढ़ते थे हम पहले कम्यून के लोकेला में, उसको उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया कि भी मर्द औरतें जो है वो सेपरेट होती हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ बड़ी एक मुनाफकीनी है, आप समझ रहे हैं, मुनाफ़कत है कि इसमें मैं भी बाद में आऊंगा कि क्यों हुआ ये। तो इसके ऊपर बकायदा आज चौथी बार हमारा जो सेशन हुआ है, तो फिर उसमें डेनिश पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने इस इशू को रेज किया, और वहां पे आप यकीन करें कि मुझे इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि हमेशा ये होता है डेनिश सोसाइटी में। आप देखें ये बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अपने लेडीज के अपने ग्रुप होते हैं और जिसमें मर्दों की अपनी एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बनाया जाता है। और मैंने वहां पे बड़ी एक जो मिगल प्योन है डेनिश पीपल्स पार्टी का, खस्तन प्यूलो है पीपल्स पार्टी का, जोहन बे वाटर है लिबरल अलायंस की, सीने प्यूवेल है विंसवा पार्टी की, इन सब ये एक तरफ सारे, तो मैं समझता हूँ एक इनका जो रवैया था, जो इनकी जो पॉइंट्स थे, वो एक इस्लामोफोबिक और एक खतरनाक किस्म की हमारी जमहूरियत के लिए उनके पॉइंट्स थे। ये मेरी एक जाती राय है, और मैं एक तरफ और बकाया सारे चुप, लेफ्ट विंग पार्टीज में सब चुप, जिनको आप अक्सर वोट देते हैं सब चुप। ये मुसलमान, ये इनको ये किया जाए वो किया जाए, ये क्वीन होना छोकने हैं, नेगेटिव सोशल कंट्रोल है। तो वहां पे मैंने एक सवाल उठाया जिसका भी मैं क्लिप लगाऊंगा, अभी थोड़ी देर में लग रहा है। मैंने उनसे कहा आप मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि जो तंजीमें हैं जो स्विम हेल लेती हैं और स्विम हेल के अंदर जो जो ग्रुप है जिसमें सिर्फ लेडीज होती हैं उसमें वो कहते हैं मर्द नहीं अब आ सकते, ये स्विमिंग कर रही है, इसको आप कहते हैं कि ये मुसलमान औरतें करती हैं, ये फिर होना छोड़ने हैं। तो मैंने उनसे ये पूछा, ये बड़ा नोट करने वाला पॉइंट है, और मैंने उनसे पूछा आप जितने भी राइट विंग पे हैं जो मुसलमानों को बुरा भला कह रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि ये सिर्फ फिने ओना छोकने और सिर्फ औरतों के साथ बर्बरियत तब है जब ये कोपेनहेगन कम्यून की जो जुरिस्डिक्शन है और कोपेनहेगन कम्यून की जो लोकेल हैं, जो रूम्स हैं, फैसिलिटीज हैं, उनमें होता है तब ये फिने ओना छोकने है, या ये चीज ये मर्द औरत इकट्ठे नहीं होते सेपरेट होते हैं, ये अपने आप में क्वीन ऑनर्स सोचने हैं। ये देखिए सवाल आप लोग, मैं फिर जरा सुनने वाले हैं उनको दोहरा रहा हूं। मैंने उनसे ये सवाल किया कि जब आप ये कहते हैं कि ये औरतों के साथ बर्बरियत है तो ये इसको इस्लामिक ट्रेडिशन से इसको खत्म किया जाए, तो मैंने सवाल ये किया जब ये कोपेनहेगन कम्यून की फैसिलिटीज में होती है चीज कि औरत और मर्द सेपरेट होते हैं, तो क्या ये इसलिए आप कह रहे हैं कि औरतों के लिए के ऊपर बर्बरियत है कि ये कम्यून की फैसिलिटीज में हो रही है, या ये अपने आप में कि औरत और मर्द सेपरेट है, ये अपने आप में आप समझते हैं कि ये औरत के ऊपर बर्बरियत है? ये मैंने सवाल किया और किसी से जवाब ना दिया गया हो, कि कोई जवाब ना दे। फिर मैंने दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार जो मैंने किया, मैंने सोचा मैं इसलिए ये सवाल कर रहा हूं, तो आप समझते हैं कि कोपेनहेगन कम्यून की फैसिलिटीज के हवाले से, मतलब मिस्टिक सहल और स्विम हेल के हवाले से बात नहीं है, बात यह है कि अगर मर्द औरत जो है वो सेपरेट बैठते हैं किसी प्रोग्राम में स्विमिंग में मुसलमानों की, तो आप इस चीज को गलत समझते हैं। तो फिर आप मुझे ये बताएं कि जो यहूदियों का सिनेगॉग है खुशतैल कल में, वहां पे जब मर्द औरतें सेपरेट बैठती हैं तो क्या उस पर आप कंडेम करते हैं? क्या उधर भी आप समझते हैं कि ये औरतों के ऊपर बर्बरियत है? आप यकीन करें ऐसी खामोशी छा गई पूरे असेंबली में, ये देखने वाली थी, सारे चुप। मैंने कहा कि अगर आप समझते हैं इस्लामिक ट्रेडिशंस कहां पे मर्द औरत सेपरेट होते हैं जिमनास्टिक करते हुए या स्विमिंग करते हुए या वैसे बैठते हुए, उनके ऊपर आपने पाबंदी तो लगा दी है, तो फिर आप अपने मुंह से ये कहें कि जो सिनेगॉग में यहूदियों का जो टेंपल है यहाँ पे, वहां पे जब वो औरतों को पीछे बैठाते हैं और सेपरेट बैठाते हैं और मर्दों को आगे बैठाते हैं, उधर भी कहें कि वो भी फिर बर्बरियत कर रहे हैं अपनी औरतों पर। यकीन करें मैंने जब ये सवाल किया पहले तो उन्होंने जवाब नहीं दिया, जब मैंने ये बात की खामोशी, कोई आगे जवाब नहीं दे सकता, इनकी तो जरूरत ही नहीं है कि ये कहे। मैंने कहा ये इसलिए आप लोग मुनाफकत कर रहे हो, अगर आप लोगों के दिल में ये बात होती कि मर्द औरत जो है वो एक रिलीजियस पर्पस की वजह से इकट्ठे नहीं होते, तो फिर आप हर रिलीजन को कहें कि यहूदी भी कर रहे हैं तो वो भी गलत है, मुसलमान भी कर रहे हैं वो भी गलत है। नहीं, आप लोग सिर्फ मुसलमानों को कहते हो, आप लोग सिर्फ जो है हमारे ऊपर जो आप लोग कानून बनाते हो, इसलिए ये आपकी मुनाफकत है और ये आप लोग मुसलमानों को क्या कहते हैं हंट कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आप यकीन करें वहां खामोशी छा गई, क्यों? क्योंकि मजाल है किसी की, है किसी की मजाल जो यहाँ की जो यहूदी माइनॉरिटी है उनके खिलाफ कोई बात करे? तो मैं ये समझता हूँ कि वहां पर ये बड़ी बैन पर वहां पे किसी ने ये बात की होगी और जिस वजह से इनके पास आर्ग्यूमेंट ही नहीं था। आप यकीन करें मैं एक तरफ और ये सारे दूसरी तरफ, और जो बकाया हमारे नादान दोस्त हैं इनस लिस्ट में हमारी खेल मिनिस्टर में, वो तो कुछ बोले ही नहीं ना, वो तो चुप रहे बिल्कुल, उनके तो मुंह को ताले लग गए। तो वहां पे हम फ्री कौन ही बोल रहे थे, मैं बोल रहा था। तो ये बड़ी, आप देखे ना कि ये इससे बड़ी मुनाफकत क्या हो सकती है। तो अगर आप है कि ये बात गलत है तो उधर भी क्या गलत है, उधर तो किसी ने नहीं कहा। तो इसी तरह इस पे भी बहस हुई। उसके बाद हमारा एक बहुत बहुत बड़ा इशू है जिसके ऊपर मैंने भी बकायदा बात की कुछ अरसा पहले, हुई है कि कोपेनहेगन के छिंग पे आके इलाके में, वहां पे कोई पुलिस ने किसी यंग बंदे को गाड़ी में रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुका, पर वो उसने पुलिस के कहने पर नहीं रुका, तो उसने क्या किया, उसने गाड़ी भगाने की कोशिश की। तो वो वीडियो पे है, वीडियो नजर आती है कि एक पुलिस वाला जो है वो गाड़ी के पीछे खड़े हो गए, यानी कि वो गाड़ी के आगे नहीं खड़ा, गाड़ी उससे दूर भाग गई, वो गाड़ी के बैक साइड पे खड़े होके उसने फायर कर दिए, उसने मुखालबत को 6 फायर किए और जो बंदा था वो जख्मी हो गया। और अब वो केस जो है वो पुलिस के एक और डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे वो ये देखते हैं कि पुलिस वालों ने सही हरकत की है या गलत किया है, उनका एक्शन सही था या गलत था। उसमें जो है ये अभी इस पर चढ़ी है, तो वहां पे यंग लोग हैं छिंग पे आके उन्होंने वहां पर वो दंगे फसाद किए हैं, उन्होंने कहा है कि ये जो आपने उसने गोली क्यों चलाई है, तभी गाड़ी से फरार हो रहा था, ये भाग रहा था, ये कोई उस पुलिस वाले को अपने जान का खतरा नहीं था, फिर भी इसने मैगजीन चला के उसको जख्मी कर दिया, तो ये ज्यादती है वगैरह। इसके ऊपर जो विंस्ता पार्टी है, जिसको कभी आपके हमारी कम्युनिटी के लोग सपोर्ट करते थे, ये विंस्ता पार्टी जो है इन्होंने क्या सजेशन दिया, बिल पेश किया कि छिंगप्या के अंदर जो यंगस्टर्स हैं उनके ऊपर कर्फ्यू लगाया जाए, वो एक टाइम के बाद जो है वो घर से ना निकल सके। अंदाजा लगाएं डेनमार्क में ये भी हालात होने थे कि पार्लियामेंट कोपेनहेगन असेंबली के अंदर विंस्ता पार्टी ये क्या कहते हैं बिल पेश कर दी है कि क्या कुछ एक मखसूस टाइम के बाद जो यंगस्टर्स हैं छिंगप्या में जो रहते हैं उनको ऊपर कर्फ्यू लगाया जाए, वो घर से ना निकल सके। मतलब इतनी तो
1: क्या वो डेनमार्क के शहरी नहीं है?
0: मैं कहता हूँ कि इतनी बेहूदगी। तो वहां पे बात हुई, बहस हुई, और मैंने इनसे कहा तो फिर अब अगली बार क्या होगा, जब नवंबर पे अगली बार फसाद होंगे तो फिर उधर भी आप कर्फ्यू लगा देंगे, और फिर आप ये और लगा देंगे, फिर इस तरह आप सब यंगस्टर्स को जो है रखेंगे अंदर जेल में रखेंगे, आप उनको एक किसी पिंजरे में रखेंगे, जानवर की तरह रखेंगे। उसके बाद मैंने उसे कहा कि आप एक क्रिएट कर दें ए एंड बी टीम, के कुछ लोग जो है यंगस्टर्स जो है वो किसी एरिया में रहते होंगे, वो बाहर जा सकते होंगे, और जो उस एरिया में यंगस्टर रहते हैं उनको आप कर्फ्यू जो है पुलिस उनको घर फिर लेके जाएगी, अब आप घर जाए आप बाहर नहीं जा सकते। अगर वो मिल के दोनों की हाउस प्लेस गए हुए हैं और वहां पे वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या एक बच्चा जो छिंगबिया में रहता है वो अब दूसरों को कहेगा लो भैया मैं घर जा रहा हूँ, मुझे अब कर्फ्यू है, मैं बाहर छिंगबिया में नहीं रह सकता। और अगर वो बाहर से छिंगबिया के बाहर है कहीं और वो घर आ रहा होता है, वो छिंगबिया से गुजर के अपने घर जाना है कर्फ्यू के टाइम के बाद, तो क्या पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी? पर ये इतनी बेहूदगी और इतना पागलपन और इतनी हेटनेस का मुजाहरा है कि मैं कहता हूँ कि वहां पे भी फिर हमारी बहस हुई, कहता लंबी चौड़ी बहस हुई, और वहां पे भी मैंने उनसे कहा कि ये आप लोग ज्यादती कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। और आप
1: तो वेंस्टा पार्टी की कौन सी पार्टियां उनकी हमायत कर रही थी?
0: वहां पे कुछ पार्टी हमायत कर रही थी, कुछ काफी पार्टी हमायत नहीं भी कर रही थी, लेकिन उस पे मेरा ख्याल से अभी मेरे जेहन में निकल गया कि एग्जैक्ट कौन सी पार्टी जो है वो हमायत में थी।
1: तो जब गैर मुल्की नसाद जो जिनको वोट का जमहूरी हक मिला हुआ है, तो जब इन पार्टियों को वोट देते हैं तो वोटर सपोर्टर सोचते नहीं होंगे?
0: भाई देखें, मुझे यही तो अफसोस होता है कि आप अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ मार रहे हैं, खुद जो है आप ऐसे लोगों को वोट देते हैं जो या तो एक तो आपके खिलाफ बात करते हैं, या आपके खिलाफ बात हो रही हो तो आपके हक में बोलते ही नहीं है, चुप बैठे रहते हैं। तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि ये आप देख लें, इसी दिनों में इंगा स्टॉप है जो है उसने भी बकायदा एक क्या कहते हैं प्रपोजल पेश किया है कौमी असम्बली में, जहाँ पे वो ये बात करती है कि आज के बाद जो बच्चे हैं मुसलमान बच्चे हैं स्कूलों में, उनको रोजा रखने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उसने को 15 पॉइंट दिए हैं, उसमें एक पॉइंट ये था। दूसरा उसने पॉइंट ये दिया है कि जो जैकेटें होती हैं तून या का, वो इनको पहनने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ मेरा खूबसूरत अच्छा मुल्क डेनमार्क किस जगह किस तरफ ये लोग सियासतदान लेके जा रहे हैं, ये बदबख्त और कमबख्त सियासतदान किस तरफ लेके जा रहे हैं? क्या हम जमहूरियत पसंद नहीं है? क्या जमहूरी मुल्क डेनमार्क नहीं है? उसमें आप देखें, मैंने इनसे ये सवाल किया फेसबुक पे, मैंने ये लिखा, मैंने इनसे कहा आप बताएं कि आप किस तरह लोगों को रोजा रखने से क्या कहते हैं रोकेंगे? क्या कोई स्पेशल पुलिस होगी, शुरता होगी कोई स्कूलों में जो बच्चों को बाय फोर्स उनके मुंह में खाना डालेगी? मतलब ये कौन सी ये जलालत है, ये क्या, ये किस तरफ आप डेनमार्क को लेके जा रहे हैं? लेकिन मैंने हमेशा ये बात कही है कि आप खुद भी आपका अपना भी एक इसमें हमारा ब्लेम है, क्योंकि ब्लेम मैं करता हूँ अपने लोगों को, क्योंकि आप वोट दें, वोट खास करें, जो आपके लिए बोलते हैं उनकी सपोर्ट करें, वो ट्रेंड छोड़ें जो पहले कभी आप इन पार्टियों के मेंबर थे आता के और क्या कहते हैं वो आपके खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन आप अपनी सीट के लिए कह रहे हैं कि नहीं इसको सपोर्ट करें, इसको करें, छोड़ें इन चीजों को। जो पार्टीज आपके हक में बोल रही हैं, जो आपके हक में है पार्टीज, उनको आप सपोर्ट करें। और उसके बाद ये है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरे डेनमार्क में अगर कोई पार्टी है जो पोटेंशियल रखती है आपके बच्चों के लिए बोल, आपके बच्चों के हक में बोलने के लिए, आपके हक में बोलने के लिए, तो फ्री कौन है? आप, मेरा ये ओपन चैलेंज है, मुझे आप बता दें कि कोई पार्टी ऐसी है यहाँ पे जो आपके लिए इस तरह बोलती हो, जो फ्री कौन है बोलती है? हम पार्लियामेंट में थे, हम तब भी बोलते थे, अब मैं कोपेनहेगन असेंबली का मेंबर हूँ, वहां भी मैं बोलता हूँ, मुझे दिखा दें अगर वो कोई पार्टी आपके हक में इस तरह बोलती है। अभी तो आपने देखा कि गाड़ीखेल विंस्टा ने, जिसको आपने भरपूर वोट दिया इस बार, रिखेल विंस्टा ने कुछ दिन पहले तस्लीम किया है और कहा है कि आपको पता है कि पहले जो ये जो राइट विंग पार्टीज है इन्होंने ये बात कही कि आज के बाद जब आपने पार्लियामेंट जब आपने लेना है, आपने जब पासपोर्ट लेना है, तो अभी बहुत सारी शर्तें हैं, शर्तें जब आप उनको फुलफिल कर लें उसके बाद आपको पासपोर्ट मिल जाता है। लेकिन आपने देखा, बहुत ही अफसोस की बात है कि मौलाना हाफिज इदरीस साहब जो है उन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली थी कानून की, इसके बावजूद उनको पासपोर्ट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कुछ राइट विंग पार्टीज इंक्लूडिंग अब सोशल डेमोक्रेट ने ये कहा है कि अब हम सिर्फ जो न्यूट्रल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसे नहीं देखेंगे, हम ये भी देखेंगे कि बंदे का जहन कैसा है, अंदाजा लगाए कि बंदे का जहन कैसा है। तो उसने फेसबुक पे पहले कभी कोई ऐसी चीज लिखी है जो हमें पसंद नहीं है, जो हम समझते हैं गलत है, तो इसलिए हम उनको देखेंगे। इस रास्ते कि उन्होंने मौलाना इदरीस साहब है, हाफिज इदरीस साहब है, उन्होंने हर वो बिल के ऊपर नाम था उनका, उनको मिलना था, उन्होंने उनका नाम बिल से हटा दिया और नहीं दिया कि भाई ये जो ये इमाम है और ये इनकी जो बातें हमें नहीं पसंद तो हम नहीं देते। ये कितनी बड़ी जिस तरह की
1: लेकिन सिकंदर चूंकि ये जमहूरी मुल्क है, उनकी बड़ी तंजीम है, तो तंजीम को एहतजाज भी रिकॉर्ड कराना चाहिए था अपना।
0: जी जी जी जी मैं आपको बताऊं ना, उसमें ये सारी सिर्फ जो रेसिस्ट और जो इन खरीज पार्टीज थी, ये वो पार्टी जो है इस चीज को सपोर्ट करती थी, फिर सोशल डेमोक्रेट ने इसको सपोर्ट किया, और अब कुछ दिन पहले जो गाड़ीखेल मिनिस्टर है उन्होंने भी ऐलान किया कि हम भी इसे सपोर्ट करते हैं, हम भी इस चीज को सपोर्ट करते हैं कि आज के बाद कोई फॉरनर लेता है पासपोर्ट की एप्लीकेशन देता है तो 10-11 साल बाद फिर वो सारे टेस्ट देता है, फिर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करता है, उसके बाद फिर हम इसका जेन देखेंगे कि ये कैसी जहनीत का मालिक है। आप अंदाजा लगाएं कि थॉट पुलिस मतलब ज़हनियत को चेक करने के लिए अभी के पुलिस बिठाएंगे कि आप अच्छा, फिर जो सियासतदान है मुसलमानों के खिलाफ है अक्सर पाकिस्तान डेनिश पार्लियामेंट में, तो उसमें क्या ये फिर इसके खिलाफ बोलेंगे क्या उसके, फिर ये क्या कहते हैं कि आपने फेसबुक पे 10 साल पहले ये लिखा हम आपको पासपोर्ट नहीं देते, ये कौन सी जमहूरियत है। तो आप गाड़ीखेल विंस्टा ने भी इसमें हमें हाँ मिला दिया और कहा कि हम भी अब इसके बाद इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करते हैं। लानत भेजता
1: हूँ, कहते हैं अपनी आवाज उठाते हैं सिकंदर, और वोट तो बहुत ज्यादा है कोपेनहेगन कम्यून में भी, पूरे डेनमार्क में गैर मुल्कियों के वोट हैं, जब इन्हें अपने हकूक का इस जमहूरी मुल्क में पता ही नहीं, वोट देना इनका जमहूरी हक होता है, जब ये वोट देते हैं और उसके बाद जो है वो बातचीत शुरू हो जाती है, तो वोट देने से पहले ये सोचते क्यों नहीं है लोग?
0: क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं, कुछ गंदे अंडे हैं, कुछ मीर जाफर मीर सादक होते हैं, कुछ लोग जो हैं वो खुद ये एक कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी वो होते हैं जिन जो अपने वो मिसाल तो मेंबर हैं उन्हीं पार्टी के, तो वो क्या कहें, वो फिर अपने पार्टी का दिफा करते हैं, कुछ लोगों को अपनी सीट का इंटरेस्ट होता है, इस तरह डिफरेंट रीजन होती है, ये जरूरी नहीं कि हर किसी की बहुत भी रीजन है साथ देने की उनका, लेकिन सबकी अपनी अपनी रीजन होती है, और जब तक आप अपने जात से हट के मुश्तरका तौर पे आप ये नहीं देखेंगे कि एज अ कम्युनिटी एज इस मुल्क के शहरी के तौर पे इस मुल्क के लिए हमारी कम्युनिटी के लिए क्या बेहतर है, तब तक ऐसे ही डिवाइड रूल होता रहेगा, आप जो है अपने छोटे मफाद के लिए अपना बड़ा मफाद जो है उसको नुकसान पहुंचाएंगे।
1: बहुत शुक्रिया सिकंदर, ये हाल ही में जो है 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम्स हुए, इस पर हम बाद में आते हैं, ये मेडल की तरफ आते हैं, ये मेडल कैसे मिलते हैं, उससे पहले जो मुख्तलिफ प्रोग्राम हुए, सब जगहों पे प्रोग्राम हुए, बड़ा प्रोग्राम था जो पाकिस्तान एम्बेसी का जो ऑफिशियल प्रोग्राम था, इसमें कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और सब ने जो है हमारी डेनिश सफ़ीर भी वहाँ मौजूद थी, तो आपने देखा कि वहाँ कितना खुशगवार माहौल था, इस पर आप क्या रोशनी डालेंगे?
0: देखिए मैं समझता हूँ कि ये हमारी बड़ी खुशनसीबी है कि इस वक्त जो एम्बेसी का जो अमला है और उनको जो उनकी जो सरबराही कर रहे हैं एम्बेसडर साहब, ये मैं समझता हूँ कि डेनमार्क के पाकिस्तानी जितने भी यहाँ पे बसते हैं उनके लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इस जैसे एम्बेसडर जो है वो यहाँ पे आए हैं और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं पाकिस्तान और डेनमार्क के रिलेशंस के हवाले से, उनकी ओपन डोर पॉलिसी जो है वो सबके सामने है, वो हर जगह जहाँ भी कोई बुलाए उन्हें वहाँ जाते हैं, मिलते हैं लोगों से, एम्बेसी के दरवाजे खुले हुए हैं, और जो 14 अगस्त के दिन जो फंक्शन हुआ है वो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा हुआ है, और वो इस बात की गवाही देता है कि कितने खूबसूरत और मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने 14 अगस्त की सेलिब्रेशन की है, जिसमें पहली बार ये हुआ है कि डेनिश एम्बेसडर जो पाकिस्तान में होती है पाकिस्तान की, उन्होंने भी शिरकत की है, ये बताता है कि इस वक्त डेनमार्क और पाकिस्तान के जो रिलेशन हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत टाइट हैं और बहुत ये करीब आ चुके हैं, तभी उनकी एम्बेसडर यहाँ पे बैठी हुई थी। और ये क्रेडिट जो है ये एम्बेसडर साहब जो है एक्सीलेंसी शोएब सरवर साहब ये उनको जाता है। उन्होंने 2-3 साल यहाँ रहे कि जो उन्होंने जो अपने सफारखाना जिस तरीके से चलाया है, अपने डिप्लोमेटिक अपने जो ड्यूटीज है उनको जिस तरीके से सर अंजाम दिया है, ये उनकी क्या कहते हैं ये वो फ्रूट है अब उसका जो हम देख रहे हैं। और 14 अगस्त और डेनमार्क और पाकिस्तान एम्बेसी की उस फंक्शन की बात की जाए और राजा गफूर अफजल साहब आपकी शील्ड की बात ना की जाए तो ये भी नाइंसाफी है। मैं जनाब दिल की अता ग्राहियों से राजा साहब आपको, आप कम्युनिटी फोरम के चेयरमैन हैं, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि वहाँ पे सारी कम्युनिटी के सामने ऑफिशियली 14 अगस्त के दिन फ्लैग सेरेमनी के बाद एम्बेसडर साहब अपनी तकरीर में आपको बुलाया और आपको एज अ कम्युनिटी लीडर रेकग्नाइज किया कि आपने जो मेरे सामने तो 20 साल की आपकी ये क्या कहते हैं जद्दोजहद है, लेकिन आप 35 साल से कर रहे हैं, उन्होंने इस चीज को रेकग्नाइज किया और आपको शील्ड पेश की, सबके सामने की, कम्युनिटी के सामने की, बच्चों के सामने की, माओ बहनों के सामने की, बुजुर्गों के, सारी कम्युनिटी के सामने की। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी रिकग्निशन है और आपने जो दिन रात एक करके इस कम्युनिटी की लीडरी संभाली हुई है, इस कम्युनिटी जो आपने कम्युनिटी फोरम दे के उसमें आप जो इस कम्युनिटी के लिए एक्टिविटीज करते हैं और आपकी जो ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी तमाम पाकिस्तानी जो करता धरता सोसाइटीज हैं और तंजीमें जो हैं और जो सारी जो आपकी इस अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन अंडर है, मैं समझता हूँ कि एम्बेसी ने बहुत खूब बहुत सही इस चीज को रिकग्नाइज किया है आपको एज अ कम्युनिटी लीडर। आपकी जो जिनाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जो आप प्रोग्राम करते हैं उनकी 150 इयर्स की बरसी पे शायद उस सालगिरह पे जो है उन्होंने इस चीज को रिकग्नाइज किया है, तो इसकी मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
1: सिकंदर एक और बात करते चलें कि आपको सतारा इम्तियाज मिला और उसके बाद हमने देखा कि स्टेट के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आपको आम भेजे, पाकिस्तान स्टेट के वज़ीर ख़ारजा उन्होंने आपको आम भेजे, ये भी ज़रा बताएं उन्होंने आम क्यों भेजे आपको।
0: देखें कि उनकी उनका बड़प्पन है, आई फील वेरी ऑनर्ड कि उन्होंने ये भेजे। ये जाहिर बात है ऐसे होता है ना कि जब आम का सीजन होता है तो वो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो और जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो फिर आम जो है वो भेजते हैं। उन्होंने डिफरेंट ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स को भी भेजे, उनके जो और आप समझ लें जो जिनको वो समझते हैं कि उनको गिफ्ट देना चाहिए उनको देते हैं, उसमें एम्बेसडर्स भी होते हैं, उसमें जो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। अभी लगाई थी मेरे ख्याल से लिथुएनिया के प्राइम मिनिस्टर साहब ने लगाई थी, तो मैं आई फील वेरी बड़ी हम्बली ये कह रहा हूँ कि आई फील वेरी ऑनर्ड और ये क्या कहते हैं मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ हमारी जो पाकिस्तान की क्यादत है उनका कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि उन्होंने मुझे ये भेजे, पिछले साल भी भेजे थे, इस बार भी भेजे हैं। आई फील वेरी हम्बल्ड, आई फील वेरी ऑनर्ड और मैं उनका दिल की अताग्राहियों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मुझे इस काबिल समझते हैं कि उन्होंने मुझे ये भेजे।
1: सिकंदर ये सफीर मोहतरम की कामयाबी है। आगे हाजी असलम मेहर साहब बात कर रहे थे कि उनका टेन्योर जो है वो 2 साल बढ़ाया जाए। सिकंदर देखें 14 अगस्त के हवाले से अगर 2026 की हिस्ट्री को देखा जाए, लोग तो बनाते रहते हैं इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी ने प्रोग्राम किया एल्बर्टसन में, इसी तरह जो है वो दूसरी तंजीमात ने प्रोग्राम किया, मुस्लिम लीग नवाज़ ने प्रोग्राम किया, इसी तरह जो मैंगो फेस्टिवल हुए उससे पहले जो 14 अगस्त के प्रोग्राम हुए और उसके बाद पाकिस्तान एम्बेसी का बड़ा प्रोग्राम हुआ, इसी तरह पाकिस्तान सोसाइटी ने प्रोग्राम किया, तो ये सारा क्रेडिट जो 14 अगस्त के हवाले से आए वो सफ़ीर मोहतरम का काम जो है हमें नज़र आता है। तो जो लोग आप डिमांड कर रहे हैं उनकी 2 साल टेन्योर और बढ़ाया जाए, आप क्या कहते हैं?
0: मैं तो समझता हूँ कि अगर ये काम हो जाए तो ये बहुत बड़ी हमारी खुशनसीबी है। मैं कल आपकी एक पोस्ट पढ़ रहा था, आपने बड़ी एक दिलचस्प पोस्ट लगाई कल, जिसमें आपने ये बता रहे थे कि पाकिस्तानी जो है वो कितने डेनमार्क में आए हैं इस पिछली दहाई में, और उसमें मैं पढ़ रहा था आपकी खबर कि उसमें 2010, 11, 12, 13, 14 यानी कि इन एम्बेसडर के आने तक 200 से 500 के दरमियान जो है पाकिस्तानी जो है वो डेनमार्क आ रहे थे। तो अचानक जो है 24 और 25 में, अचानक 24 में कोई 800 प्लस लोग आए हैं और 2025 में तकरीबन को 1500 लोग जो है वो आए हैं, कहाँ 200 और कहाँ 1500। तो मैं सोच रहा था कि यार ये देखो, ये जो एम्बेसडर साहब है इन्होंने इतना बेहतरीन काम किया, डेनमार्क और पाकिस्तान के रिलेशन इतने बेहतर हो रहे हैं कि कितने लोग 2024 और 25 में यानी कि इनके इनके टेन्योर के दौरान जो है इतने सारे लोग आए हैं। तो ये इस चीज की गवाही देती है कि एक डेनमार्क और पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशंस, डिप्लोमेटिक टाइज बेहतरीन हो रहे हैं, और उसका क्रेडिट इन्हें जाता है कि ये आए हैं। तो इन्होंने, क्योंकि मुझे ये भी पता, मैं अक्सर ही बात करता हूँ, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो कम्युनिटी नहीं देख रही होती, जो पसे पर्दा हो रही होती है, जो मुल्कों के दरमियान हो रही होती है, जो डिप्लोमेसी के दरमियान हो रही होती है, जो एम्बेसडर्स के दरमियान हो रही होती है, वो आप नहीं देख रहे होते। कुछ चीजों का मुझे पता है, कुछ चीजों का मुझे इल्म है और मैं देख रहा होता हूँ, और इन्होंने बहुत काम किया है। और इन्होंने सिर्फ ये नहीं कि वो एम्बेसडर आते हैं कहते हैं ट्रेड बढ़ाओ और बस जो एक ड्यूटीज है, नहीं, ये उससे बढ़ के जो है इन्होंने काम किया है, और उससे बढ़ के इनका इंटरेस्ट और इनका फोकस रहा है सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे, पाकिस्तान और डेनमार्क रिलेशन के ऊपर, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं समझता हूँ कि अगर इनको 2 साल और यहाँ पे मिल जाते हैं, ये भी हमारी खुशनसीबी होगी, और ये हमारे लिए एज अ कम्युनिटी जो है, एज अ डेनिश पाकिस्तानी, ये डेनमार्क और पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत बहुत अच्छा, अच्छे साबित हो सकते हैं।
1: सिकंदर, फ्री ग्रोने पार्टी के पहले आपके साथी थे, वो ख्याल है, बड़ा मुतरक हैं, बड़े पोलाइट हैं, इलेक्शन भी लड़ते हैं, उन्होंने 2-3 इलेक्शन लड़े और आगे भी इलेक्शन लड़ेंगे और अपना सफ़र वो जारी रखते हैं। राशिद ने कल हमारे एजाज़ में, आपके एजाज़ में एक दावत की, उसके मुतालिक आप क्या फरमाएंगे?
0: ये देखें, राशिद अली का प्यार है, मोहब्बत है कि उन्होंने सारे मीडिया, डेनमार्क जितना भी डेनमार्क का मीडिया है, पाकिस्तानी डेनिश मीडिया, उसे बुलाया, कुछ और जो दोस्तों को बुलाया और हमारे ऑनर में रखी कि हमें, मुझे ये सदारती जो मेडल मिला है जो हुकूमत पाकिस्तान ने दिया है, और आपको जो एम्बेसी में आपके कम्युनिटी लीडर होने की जो रेकग्नाइज जो आपको किया है, उसमें उनके लिए उस हवाले से उन्होंने दावत दी। और मैं समझता हूँ कि राशिद साहब का ये प्यार है, मोहब्बत है, उनकी ये एक कमिटमेंट जो है हमारे साथ, कम्युनिटी के साथ, उस हवाले से उन्होंने, मैं बड़ा उनका शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम कल रखा। यहाँ पे कल अहमद फारूक साहब जो हैं, बहुत ही मोहतरम एम्बेसडर साहब, जो के जो शोएब सरवर साहब से पहले एम्बेसडर थे, वो क्या कहते हैं यहाँ पे आए हुए थे, और बेसिकली उन्होंने भी कल खाना रखा हुआ था इसी टाइम पे। उनसे भी मैंने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मैंने उनसे माजरत की कि उसमें हम नहीं आ सकते क्योंकि राशिद साहब ने हमारे लिए ये प्रोग्राम रखा हुआ था। तो मैं राशिद साहब को यही कहूँगा कि अल्लाह पाक उनके कारोबार में, उनकी जिंदगी में, उनके जिंदगी के हर हालात में जो है रहमतें नाजिल करे, मजीद उनके कारोबार में बरकतें पैदा करे अल्लाह पाक। मेरी तो यही दुआ है और मैं उनके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऑनर में निकल दावत रखी।
1: सिकंदर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो अवार्ड मिलते हैं, 17 इम्तियाज मिलता है, ये ऐसे ही मिल जाता है या आपको जो मिल गया ये वैसे ही मिल गया है?
0: देखिए, ये जो
1: इसका पूरा प्रोसीजर अगर बता सकते हैं तो।
0: देखिए, ये जो प्रेसिडेंशियल जो मेडल होता है ना, ये हाईएस्ट जो पाकिस्तान की जो रिकग्निशन है, जो मेडल्स होते हैं, जो कैटेगरी होती है मेडल्स की, ये वो हाईएस्ट कैटेगरी होती है, ये प्रेसिडेंट जो है वो देते हैं, और ये स्टेट होती है वो ये फैसला करती है कि इसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं इसे, कि आपने कोई ऐसी परफॉर्मेंस की हो तो तब देते हैं। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात ये है कि कुछ ऐसे शायद वो नादान दोस्त या जिनको शायद इतना नहीं पता, वो ये समझते हैं कि कोई एम्बेसी जो है वो नाम दे दे तो बस मेडल मिल जाता है। ये बिल्कुल बचकाना सोच है, और ये शायद उन लोगों को असल में वो कभी खुद इन फील्ड में रहे नहीं, उनका इनसे शायद कोई तल्लक ज़ाहिर बात है नहीं रहा, उनको शायद पता नहीं है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, वो एम्बेसडर साहब या एम्बेसी जो है वो मेडल दिलवा देती है, ये बिल्कुल खुराफात है, इस तरह नहीं होता। इसकी बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, उससे आप गुजरते हैं। ये पहले आपका कोई नाम देता है, या कोई जगह से एक एप्लीकेशन जाती है कि ये इसकी जो है, या वो खुद जो कमेटी जो बैठती है मेडल देने के लिए, वो देखती है कि वहां पे यहाँ पे ये लोग जो है ये एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, काफी अरसे से दे रहे हैं, या इनका कोई ऐसा काम है जो जो एक मेडल के लायक है, तो वो फिर बकायदा 8 को मीटिंग्स होती हैं, एक बकायदा एक लंबा प्रोसीजर होता है जिसमें इदारों के लोग होते हैं, जिसमें फॉरेन मिनिस्ट्री के लोग होते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्ट्री के लोग होते हैं,

मेडलों की, तो वहां पे बड़ी स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कि किसे दिया जाए, कैसे दिया जाए। फिर आप पहली मीटिंग से, पहली प्रोसीजर से अगर आप निकल जाए, फिर आपका नाम दूसरे प्रोसीजर में जाता है, उधर से निकल जाए, इस तरह करते करते अक्सर पहले में रिजेक्ट हो जाते हैं, फिर कुछ दूसरे में हो जाते हैं, कुछ तीसरे में हो जाते हैं। इस तरह करते करते चंद लोगों को वो ये मेडल देते हैं। और जिस तरह की मैं बता रहा हूँ, उसमें सारे जो पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, कौमी इदारे हैं, जो बड़े बड़े सिक्योरिटी आवाज है, उन सब से गुजरती है ये बात, तब जाके आपको मेडल मिलता है। तो ये जो, अगर कुछ लोगों को ये गलत फहमी है, ये एम्बेसडर के साथ अच्छे तलुकात हो या किसी के साथ अच्छे तलुकात हो तो आपको मेडल मिल जाता है, मैं समझता हूँ ये वो क्या कहते हैं, चारे जो जिन लोगों को ज्यादा इल्म नहीं है इस बारे में, ये वो ही लोग जो है समझ सकते हैं। ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो हर वक्त हर किसी को मेडल मिल रहे होते। पाकिस्तान, हकूमत पाकिस्तान, और मैं सिर्फ हकूमत पाकिस्तान नहीं कहूंगा, स्टेट ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये हकूमत नहीं देती, स्टेट आपको देती है। फिर ये जो मेडल आपको फिजिकली सदर देता है, जो जो मुल्क का सदर होता है, लेकिन ये मेडल स्टेट देती है, हुकूमत नहीं देती। और स्टेट का ये बहुत बड़ा ये एजाज होता है, और इसमें बहुत स्ट्रिक्ट प्रोसीजर्स हैं। तो कुछ जो लोग जलने वाले जो होते हैं, कुछ लोग जिनको मिर्चे लगती हैं ऐसी बातों में, वो तो फिर ये कहते हैं कि वो ऐसे मिल गया, ऐसे मिल गया, ऐसे नहीं मिलता। उसके बाद आप ये देखें, उसके बाद जब आपको ये देते हैं तो वहां पे बकायदा एक आपकी साइटेशन पढ़ी जाती है, आपकी क्रेडेंशियल्स पढ़े जाते हैं, आपको क्यों दिया जा रहा है, वो बकायदा आपको एक रिटन में मिलता है, जहां आपको लिखते हैं रिटन में कि हम आपको ये मेडल इसलिए दे रहे हैं। तो उसपे मैंने कल भी इस पे बकायदा जो है इस पर थोड़ी रोशनी डाली, और वो साइटेशन जो है मैंने घर से मेरे पास पढ़ी हुई है, इन्होंने क्यों दी। और उसमें जाहिर बात है, मेरा जो पॉलिटिकल वर्क है पिछले 20 साल से आज तक, मैं बड़े ऑनर और बड़ी हम्बल होके, बहुत हम्बल होके, बहुत आजजी में ही मैं बात बता रहा हूँ कि मुझे बताएं और किसी ने कभी कश्मीर की जो जो इशू है वो पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके प्राइम मिनिस्टर के साथ बहस की हो, बता दे मुझे अगर यहाँ है कोई और। तो मैं बहुत आजजी से ये बात कर रहा हूँ वहां पे, इस वजह से उन्होंने ये जाहिर बात है, मैं इतने सालों से कर रहा हूँ तो फिर वो नोट करते हैं हर इदारे, यहाँ तो मैं इसराइल के खिलाफ बोलता हूँ, उनके इदारे सारी चीज नोट कर रहे होते हैं, रिपोर्टें भेज रहे होते हैं, हमारे भी इदारे सब, हर किस्म के इदारे, ये तो एक आम चीज है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ इस इशू को चढ़ा, मैंने इसको अपना कोर इशू बनाया जब मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, मैंने फॉरन मिनिस्टर के साथ इसके ऊपर बात की, उसने मुझे जब इनकी ग्रीन डील हुई इसके साथ, क्या है क्या इसे कहते हैं, इंडिया के साथ, उस पर मैंने रफर डाला, जब नरेंद्र मोदी साहब यहाँ आए थे तो पार्लियामेंट में मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ क्या कहते हैं, मेरी बड़ी तर्क कलामी हुई वहां पे, बहस हुई। और है कोई और जिसने यहाँ कभी ये किया हो, जिसने कश्मीर के इशू को, जो पाकिस्तान का कोर इशू है फॉरन पॉलिसी के हवाले से, मैं तो ह्यूमन राइट्स की वजह से बोलता हूँ ना, तो आप मुझे बताएं कि किसी ने किया है यहाँ पे, कभी किसी ने इस लेवल पे बात की है कश्मीर की। हम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी आजसी से ये बात कर रहा हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे अल्लाह पाक ने तौफीक दी कि मैंने ये की, और मैंने लगातार 3.5 साल इसको किया, कलम लिखे इसके ऊपर, और इसको मैं हाईएस्ट डेनिश पॉलिटिकल हाईएस्ट लेवल पे ले गया। कुरान पाक की बेहुर्मती जब होती थी यहाँ पे, क्या मैं वो पहला और वाहिद सियासतदान नहीं था जिसने पार्लियामेंट के फ्लोर पे बिल पेश किया कि कुरान पाक की बेहुर्मती को खत्म किया जाए? है कोई और जिसने ये किया हो? है, अगर है तो मुझे बताएं। तो इस तरह बहुत सारे, और जहां कभी पासपोर्ट पे बात हुई, जब पासपोर्टों में सख्ती हो रही है कोई और आवाज बोल रही है? मैं जब पार्लियामेंट का मेंबर था, मैं इस पे बोलता था। और इसके अलावा मैंने हमेशा अपने काम में ये कोशिश किया कि पाकिस्तान और डेनमार्क के टाइज जो है वो बेहतर से बेहतर हों। और ये वही बात होगी, पसी पड़ता बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो अक्सर लोगों को नहीं पता होता। मैंने हमेशा अपनी कोशिश की कि मैं इस पे पाकिस्तान और डेनमार्क के हालात बेहतर से बेहतर करूं, क्योंकि डेनमार्क मेरा मुल्क है, मैं यहाँ की पैदाइश हूँ, ये मेरी मिट्टी है, लेकिन पाकिस्तान में मेरे रूट्स हैं, वो भी मेरा मुल्क है, जो मोहब्बत है पाकिस्तान से मेरा हमेशा एक तल्लक रहेगा। इसके अलावा आप बताएं कि इसराइल पर है कोई मुझसे स्ट्रांग आवाज, वोकल आवाज है, सियासी आवाज जो इसराइल को कंडेम कर रहे हो? है कोई और, कोई माइकल लाल इस क्या कहते हैं सियासी निजाम में
नो ये अपनी पार्टी पॉलिसी रखे,

0: आप नसीब में मौजूद होते तो मोहतरम सफीर ने आपको एक मेडल या एक शील्ड पेश की, तो उसके लिए मेरी तरफ से मुबारकबाद आपको। आज ही बात हुई है, आज ही आपने मुझे लिया है, तो आज ही मैंने आपको मुबारकबाद दे दी है।
1: शायद आपका बहुत शुक्रिया। शायद आप जानते हैं, हमेशा से जानते हैं, और आप मीडिया पे नज़र भी रखते हैं, और हमारे सबसे पुराने लिसनरों में भी आपका शुमार होता है।
0: जी, मैं आपका ये आप गालिबन बहुत पीछे चले गए हैं, 26 साल, आज 2026 है, 2020 में चले जाएं, तो उस वक्त मैं एक टीन एज ही था, एक बच्चा था छोटा सारा, तो उसमें आपका रेडियो सुना करते थे। उसमें मैं वीकेंड में पार्ट टाइम संडे को मेरे ख्याल अपने वालद की टैक्सी भी कभी कभी चलाता था, उसमें आपका रेडियो पहली दफा सुना था। तो उसमें फिर कभी जब आप, क्योंकि उस टाइम कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई स्मार्टफोन नहीं था, कोई इस तरह की चीज नहीं थी, तो फिर जब पहली दफा ये चीज मैंने देखी इधर कोपनहेगन में, तो उसको देख के बड़ी खुशी हुई। तो मैं तब हैरान भी हुआ कि रेडियो, पाकिस्तानी रेडियो जो है कोपनहेगन की फजाओं में घूम रहा है, ये क्या है। बहरहाल पता लगा, जो बड़े मेरे से बड़े थे, जो बुजुर्ग, उन्होंने बताया वाकई ये कोई पाकिस्तानी है, गालिबन उनका राजा गफूर नाम है। तो फिर उसके बाद मुलाकात भी हुई एक निजी महफिलों में आपके साथ, आपके बच्चे भी, आप भी, तो वो फिर पता लगा कि
1: नहीं,
0: ये
1: आप
0: राजा।
1: याद होगा, आप कई दफ़ा जब आए तो खुशी से एक दफ़ा आपकी बात मैं आज ज़रा कोट कर दूं, लोगों को बता दूं, बाज़ ऐसी बातें होती हैं। और मैं और मुबशर प्रोग्राम कर रहे थे तो आप आए, आपने घंटी दी, तो आपने कहा आए तो आपके हाथ में एक गालबन पिज़्ज़ा था ना, तो कहते हैं कि आप थक गए होंगे प्रोग्राम करके, चले बैठ के चाय भी पीते हैं, मैं भी आपके साथ बैठता हूँ, ये मैं
0: जी
1: रिकॉर्ड पे
0: बिल्कुल,
1: लाना चाहता हूँ।
0: ये बिल्कुल, ये बात याद आई है, ये बहुत बहुत बहुत मतलब बहुत काफी पुरानी बात है, और ये उस टाइम
1: बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है।
0: आप हाँ, लेकिन पुरानी है लेकिन यादें रह जाती हैं, और ये वाकई ऐसे हुआ था। और मलिक मुबशर एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, एक मुखलस इंसान है, वो मुझे याद है। और वो कैसी है ये चीजें जो कि यादें रह जाती हैं आदमी की, इंसान की, इंसान चले जाता है इस दुनिया से लेकिन फिर यादें रह जाती हैं। और फिर क्या कहते हैं उसको, उस टाइम के जमाने, मेरे मेरे हिसाब से उस टाइम के जमाने ज्यादा अच्छे थे आज की बनिस्बत, अगर मैं आज देखूं तो। देखें हम, बहरहाल इसके ऊपर मैं क्या डिस्कस करूं, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं
1: आज के आजकल जो है
0: वो।
1: ना, ज़्यादा वो जिस तरह नहीं होता कोला जलता है, हालांकि कोला बड़ी अच्छी चीज़ है, फ़ायदे वाली चीज़ है, आप उस पर ग्रिल करते हैं, लेकिन आखिर में जब जो बंदा कोले से जलता है उसको पॉजिटिव लें तो वो जलने वाली चीज़ बड़ी अच्छी होती है, उस पर आप जो है ग्रिल करते हैं, कुकिंग करते हैं, लेकिन आप दूसरी तरफ जलना चाहते हैं तो फिर अब बंदा कोला आपको पता राख ही हो जाता है।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया, कोले ने तो राख ही होता है आहार में, तो उसका उसको फिर आप दोबारा तो नहीं वापस लेके आ सकते जब कोला राख हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
1: शायद आते
0: तो
1: हैं इलेक्शन की तरफ, आप सितंबर में इलेक्शन हो रहे हैं तो इसमें पाकिस्तानी निषाद भी हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि क्या लेटेस्ट पोजीशन है इस वक्त।
0: जी राजा साहब, आपने मुझे इस वक्त फोन किया है, मैं इस टाइम अपने ऑफिस के अंदर मौजूद नहीं हूँ, जो उसके अंदर मेरी मेरी जो है ना हास्कर, लेकिन फिर भी मैं आपको डिटेल दूंगा कि उसमें मेरी सारी डिटेल मेरे सामने पड़ी होती है सारी हास्कर, क्योंकि हर चीजें, बहुत सी चीजें बंदा इंसान भूल जाता है ताकि गलत ना हो जाए। तो मैं इसलिए अपने सामीन, और आपने ये लेना है इस टाइम कोई क्या कहते हैं मशवरा या कोई इन्फॉर्मेशन, तो उसमें ये है कि कोई कोताही अगर कोई गलती हो जाए तो मैं उसकी माजरा चाहता हूँ। स्वीडन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वो 13 सितंबर को है, जिसमें बड़े इलेक्शन है अपने रीजन के भी हैं, कमून के भी हैं और पार्लियामेंट के भी हैं। तो मैं स्टॉकहोम की पहले बात करूंगा, स्टॉकहोम से गालिबन 5 से 6, अगर मैं गलत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास लिखा हुआ डिटेल में कि मैं अपने घर ऑफिस में मौजूद नहीं हूँ ना मैं अपने घर में मौजूद हूँ, तो मैं बाहर हूँ। तो मैंने आपकी कॉल उठाई, आपकी आपकी जो गुजारिश थी, गुजारिश किया थी, आपका हुक्म था, तो मैंने कहा चलो मैं उठा लेता हूँ, और क्योंकि आपकी कॉल आई है, तो मैं दरअसल मैं कल चाह रहा था लेकिन कोई नहीं आज। तो उसमें ये है कि स्टॉकहोल्म से जो है ना तकरीबन 5 से 6 पाकिस्तानी खड़े हो रहे हैं, दो या दो जो पाकिस्तानी है वो उसमें दो दो दो खवातीन है, ये एक का नाम सारा कुका नाम है, और एक का नाम जकिया बीबी, ये दो हैं, और एक बुजुर्ग है غالباً 80 کے قریب, وہ بھی ریجن سے بھی اور کماؤن سے بھی اور پارلیمنٹ سے بھی کھڑے ہو رہے ہیں. باقی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کوئی کھٹانا صاحب ہیں وہ کماؤن سے, اور دو اور جو ہیں پاکستانی وہ بھی وہ کماؤن سے کھڑے ہو رہے ہیں. اور یہ جو لیڈی ہے سارا کوکا, یہ کھڑی ہو رہی ہے اسٹاک ہولم کے ساتھ, ایک شہر ہے جیسے کوپنہیگن کے ساتھ گلوسٹروپ ہوتا ہے یا کیو کہہ لیں یا کوئی ایسے کلاسک سے وغیرہ وغیرہ, تو وہ ایک اس کے لیے میئر کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں. اور ان کے جو چانس ہیں جو ہیں میئر کے لیے, وہ سننے میں آ رہا ہے کہ 90% 85-90% کے قریب ہیں وہ میئر کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں سارا کوکا. اور باقی جو زکیہ بی بی ہیں وہ, یہ میں اسٹاک ہولم کی بات کر رہا ہوں, اور باقی جو زکیہ بی بی ہیں وہ کونسل کے لیے, وہ ایک پارٹی کا نام ہے ملیوپتھی جیسے انوائرمنٹ جسے کہتے ہیں انگلش میں, تو اس طرح کی ایک پارٹی ہے. اور باقی جو دو دوست ہیں وہ سوشل ڈیموکریٹ میں ہیں اور وہ کونسل کے لیے ہیں. تو اس کی مزید ڈیٹیل میں آپ کو نیکسٹ ویک دے دوں گا اگر میں اپنے آفس میں ہوا تو, ان شاء اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ پوری کہ کیا ہے اور کدھر کدھر سے اور کیا ہے. یہ تو ہو گیا اسٹاک ہولم سے. میرے شہر یعنی کہ مالمو سے ادھر جو ہیں غالباً 5 سے 6 ہیں, جس میں سے 2 جو پاکستانی ہیں, 3 جو 4 ہیں وہ کیا کہہ سکتے ہیں وہ جو کیا گروپ ہے ان کا ریزیڈنس سے نکل گیا, جی جی بالکل, وہ پاکستانی جو ہیں وہ 3 سے 4 جو ہیں اگر مجھے غلط نہیں ہو تو وہ قادیانی جو ان کا جو فرقہ ہے اس سب سے کھڑے ہو رہے ہیں وہ ادھر مالما میں, اسٹاک ہولم میں ایسے کوئی نہیں ہے. تو وہ اور جو 2 پاکستانی ہیں جو اپنا جو پاکستانی ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں ریل پاکستانی یہ کہہ لیں, وہ کھڑے ہو رہے ہیں, جس میں ایک جو ہیں وہ ہیں اپنا کامران انور صاحب اور دوسرے امجد خان صاحب. اور امجد خان صاحب بھی ایک بزرگ سے مل لیں, بزرگ سے مراد کے 70 کے قریب ان کی ایج ہے, اور کامران جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے وہ ایک یوتھ میں آتا ہے, نوجوان میں کہہ لیں نوجوان میں آتا ہے. اور یہ 2 جو لوگ ہیں ان کی کمپین جو ہے جاری ہے, اور میں کبھی دیکھتا ہوں کبھی نہیں دیکھتا. تو ابھی جو ہے اس کی جو شدت ہے میں سننے میں آیا, میں آج 20-21 ہے غالباً اگر ڈیٹ مجھے غلط نہیں ہو, تو میرے خیال ہے 20-21 میرے خیال غالباً نیکسٹ ویک تک ان کی کمپین میں وہ شدت آ جائے گی. تو شدت سے مراد کے پھر یہ اس کو بڑھ چڑھ کے جو نا کمپین کو کریں گے, میرا جو خیال ہے یہ مجھے سننے میں آیا. تو اور ایسا ہونا بھی چاہیے. تو
1: کیا یہ برادری کون سی, دیکھیں یہ سارے بیسیکلی سارے سویڈن ہیں چونکہ جمہوری ملک میں رہتے ہیں, اس پہ کوئی ذات پات والا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا کس گروپ سے ہے کس گروپ سے نہیں ہے. تو لیکن یہ جو کیا قادیانی برادری اتنی ہے جو اتنے 3 مینڈیٹ ان کے جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہو رہے ہیں؟
0: دیکھیں جی قادیانی جو جو جو کہتے ہیں برادری کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ ان کا ایک یعنی کہ وہ ایک منظم لوگ ہیں. میں نے جو دیکھا ہے وہ گوتھیبرگ میں بھی ہیں بہت زیادہ, یعنی کہ اسٹاک ہولم سے زیادہ وہ یوتھیبرگ, یعنی کہ ہم اس کو انگلش میں کہہ سکتے ہیں گوتھیبرگ ایک شہر ہے جو سویڈن کا دوسرا بڑا شہر ہے, اور تیسرا بڑا شہر جو ہے وہ مالمو ہے. گوتھیبرگ میں وہ کافی تعداد میں, میں اس کا بھی پتہ کر رہا ہوں کہ وہاں پر کتنے پاکستانی ہے. میرے مجھے کل تک پتہ لگ جائے گا تو میں انشاءاللہ وہ بھی شیئر کر دوں گا تاکہ غلط نہ ہو جائے. تو ادھر سے مجھے لگتا ہے کہ ادھر سے بھی کافی ہوں گے یہ اپنی جو قادیانی برادری ہے. باقی جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک منظم وہ لوگ ہیں, اور وہ تعلقات کی بیس پر, میرے ایک سننے میں ایک میں جگہ پڑھ رہا تھا یار سر, وہ تعلقات کی بیس پر ایک جگہ کو لکھ رہا تھا پاکستانی جو اپنے جو ہم کر رہے ہیں الیکشن کمپین, اس میں وہ لکھ رہے تھے کہ تعلقات کی بیس پر ہم نے اس کو ووٹ دینے ہیں. تعلقات کی بیس پر نہیں ہوتے ووٹ, یہ کارکردگی اور آپ کی جو آپ منشور جو دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے اوپر لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں. یہاں پر تعلقات کی بیس پر پاکستان میں किया जाता है, लेकिन मेरे ख्याल उधर भी अब खत्म होना चाहिए। तो ये इन मुल्कों में आके जब आप रह रहे हैं 10-15-20 सालों से, कोई रह रहा है 10-15, कोई कोई शादी करके आया, कोई दामाद आया, ज्यादातर यही है ना। मैं मेरी जैसे तो कोई कम है जो जो इस वक्त यहाँ पर स्वीडन में है, तो जो जो शुरू से यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके वालदैन 60 साल पहले आए थे या 20 साल पहले, तो आप जब आए हैं तो आप 10-15-20 साल, यार बहुत होता है इन मुल्कों से सीखने के लिए। जमहूरियत का सियासत भी एक, सियासत तो हराम नहीं है, सियासत भी एक बड़ा अच्छा बड़ी चीज है, लेकिन एक मुनसफ सियासत, एक कहते हैं ना कि अपने दिल के साथ, एक लेगल लिबर्टी, मुनाफ़त के बगैर, झूठ मकारी के बगैर भी आप सियासत कर सकते हैं। सियासत तो किसी ने रोका आपसे, सियासत बड़ी अच्छी चीज है कि सियासत से आप जिस चीज अपने मुल्क के लिए सियासत कर सकते हैं, अपने मुल्क के मफाद के लिए, जैसे ये लोग करते हैं। मैं डेनिश की भी मिसाल दूंगा आपको, स्वीडन की भी, जैसे ये लोग करते हैं अपने मुल्क के मफाद के लिए ये सियासत करते हैं। हाँ, इनमें भी बड़ी चीजें हैं, कमजोरियां हैं, लेकिन ये मैं फिर उधर आ जाता हूँ कि मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा यार ये क्या लिख रहे हैं कि जी आप तलुकात की बिना पर एक दूसरे को वोट दें, और यार ये मैं पढ़ा, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपने बात की कदियानियों की। दूसरा मेरे ख्याल आपका गालिबन सवाल होगा ये अपने जो पक्षनी है, जो जो है, तो उसमें ये कह लें, जिसे कहते हैं सुन्नी पक्षनी जिले कह लें, तो उसमें ये है कि अगर ये लोग मनज़म तरीके से करें से अपनी जो है क्या कहते हैं इलेक्शन कैंपेन, इस तरह ना करें कि जैसे इन्होंने कहते हैं कोपनहेगन में किया, जो जो बात गलत है उसको तो मानना चाहिए ना। अगर कोपनहेगन में 5 लोग दोस्त हमारे इलेक्शन हार गए, बहुत बड़ी बात है ये, तो उसके बजाय कि अगर ये मैं बात करूँ गुस्सा करने की, उसकी अपनी गलतियों को सुधारने के, जैसे ये लोग डेनिश लोग करते हैं, स्वीडिश लोग करते हैं, बड़े खुशी से सुनते हैं, कहते हैं हम हारे हैं और हमें हमने ये गलतियां की हैं, लेकिन हमारे ये लोग बहुत कम इस यहाँ के भी जो तीसरी चौथी जनरेशन है, फिर चौथी जनरेशन तीसरी भी और चौथी भी काफी काफी बेहतर आ रही है और आएगी, जो आगे आ रही है, चौथी तो शुरू हो गई है, और मेरे ख्याल अगले 10-12 सालों तक वो काफी बेहतर होगी, और वो इसको जैसे ये लोग करते हैं उसी तरह करेंगे। बर्मला बिल्कुल, वो अगर कोई चीज गलत की है उन्होंने, उसका बर्मला वो जो है ना मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे कि हमारे साथ क्या कोताहियां हुई हैं, ताकि आपके वोटर नेक्स्ट टाइम आपसे बेजार ना हो और आपको वोट दें। और स्वीडन का भी यही है, अगर ये अपने इस कैंपेन में बिल्कुल यूरोप की तरह जिस मुल्क में ये रह रहे हैं, उधर की जो पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, उसको मद्देनजर रख के अपनी कैंपेन करेंगे, तो आपके इलेक्शन जीतने में काफी चांस हो जाएंगे, तो आपको वोट देंगे लोग, आपको सुनेंगे। लेकिन पहले तो आप ये बताए ना कि आप लोगों को बता क्या रहे हैं, कि आप उसमें जो ये आप जो चीज आप बता रहे हैं कि आप उसमें अमल दरामद करा सकेंगे, क्योंकि आप वही चीजें बताए ना जिसमें आप अमल दरामद करा सकते हैं, क्योंकि 3 साल 4 साल तो ऐसे ही गुजर जाते हैं, तो नेक्स्ट टाइम फिर आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं। जैसे कि डेनमार्क में बहुत से लोग आउट हुए हैं, पक्षनियों के अलावा अरबी आउट हुए हैं, तुर्की कुर्दे शॉट आउट हुए हैं, सियासत से बिल्कुल ही खत्म कर दिया लोगों ने। उसकी वजह यही हुई है कि आप झूठ एक दफा बोल लेंगे, दो दफा बोल लेंगे, तीसरे दफा लोग आपका फर्क कर देंगे। तो आप वो चीज करें जो पार्टी के मंशूर में, पार्टी से आप बात करके जिस पार्टी के टिकट लिया आपने, वो आपको बता रहे हैं कि हम कर सकते हैं, ये आप अपने वोटरों को बताएं, नहीं कर सकते वो ना बताएं। और वोटर आपसे सवाल करेगा तो आप उसको साफ बताएं कि इसका मैं कर सकता हूँ, ये
1: शायद
0: नहीं कर
1: आपने बड़ी
0: सकता।
1: दिलचस्प बात बताई है, हम लोग यूरोप में रहते हैं, स्कैंडिनेविया में रहते हैं, आपने बड़ी, ये मैं समझो कि बड़ी खबर है, और आपने ये ब्रेकिंग न्यूज़ आज दे दी है कि यहाँ जो है वो अपना सुन्नी कादियानी इलेक्शन हो रहे हैं।
0: नहीं, मैंने
1: वोट
0: ये
1: तो सुन्नी का भी बराबर है, कादियानी का भी बराबर है, शिया बरादरी का भी बराबर है, यहाँ तो वोट सब बराबर है।
0: मैंने तो ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने आपने ये कहा था कि दूसरा, यानी मैंने ये बताया था कि पक्ष नहीं है,
1: आपने इन्फॉर्मेशन
0: इन्फॉर्मेशन
1: की हद तक बात कर रहे हैं ना,
0: की हद तक बात कर रहा हूँ। मैंने ये
1: आपका
0: बताया
1: किसी
0: था
1: से
0: कि
1: मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है।
0: नहीं है, मैं ये बात कर रहा था कि एक जो जो कहते पक्षनियों का वो जो भी है उनका फिरका, उसको छोड़ें, वो मुनज्जम है, मुनज्जम होके, और उनके चांस ज्यादा है इलेक्शन जीतने में, उनके पार्टी जो जिस पार्टी से वो खड़े हैं, वो 3 है या 4 है या 2, मालूमों की बात कर रहा हूँ, मुझे ये शक है कि वो उन वो सीटें निकालेंगे, क्योंकि वो मुनज्जम होकर काम करते हैं, वो ये एक दूसरे की लेग पुलिंग नहीं करते, पक्ष नहीं है वो भी, जारी बात हमारी तरह उर्दू बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, हमारी ममालिक से उनका ताल्लुक है, तो ये तो फिर पाकिस्तानी हुए ना। तो अगर वो कर सकते हैं तो इधर क्यों नहीं आप मुनज़्ज़म होके कर सकते, अपनी कंपेन चला सकते हैं, अपना अपनी सियासत कर सकते हैं। इधर क्यों आपकी जो है एक बात क्या कहते हैं, मुंह के ऊपर और होती है, पीठ पीछे और होती है, दरमियान में और होती है। तो इधर तो फिर आप जो है ना, फिर मुनज़्ज़म ना होए। मैं इसकी मिसाल मेरे अपना मुल्क जो है डेनमार्क, उसकी बार बार दे रहा हूँ। क्यों देता हूँ बार बार, कि उसमें 5 लोगों का हारना बड़े इलेक्शन में बहुत बड़ी यार बात है, छोटी बात नहीं है। जो जो मुल्क ये सुनता है ना यूरोप का, उधर भी पक्ष नहीं है, वो हैरान रह जाते हैं। किसी को पता भी नहीं है, किसी को पता लगता है, कहते हैं ऐसे हुआ है। मैंने कहा जी ऐसे हुआ है, ये कोई छोटी बात नहीं है। उसकी उसका जाला नहीं अभी तक किया कि क्या हुआ है, उसकी अभी शर्म नहीं आई। यहाँ मुझे तो आ गई है कि शर्म आ जाए कि यार ये क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ऐसे क्या किया आपने। आप इधर की सियासत कर रहे हैं, इधर की सियासत में आप इधर ही की सियासत के लोगों से मिलें, इधर की ही कंपेन चलाएं, और इधर ही की मशहूरी करें, इधर ही की पार्टी की। जो ही आप किसी के पीछे लग के दूसरी दूसरे मुल्क की सियासत को करेंगे आप अपनी कंपेन में शामिल, लोग देख रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था आपको, वोटर आपको देख रहा है, तीसरी जनरेशन चल रही है वो आपको देख रहा है। अब ये दूसरी पहली जनरेशन नहीं है जिसमें आप ओए छड़ो यार कोई नहीं गल, ओए पुत्र वोट पा दे, अब ऐसे नहीं है। मेरे घर के अंदर मैं अपनी बात करता हूँ, अभी 13 को जाना है ना, मैंने किसी पार्टी को डालना है, मेरे बच्चों ने किसी पार्टी को, मेरी बीवी ने किसी पार्टी को डालना है। और मैंने बात भी की कि कहते पापा तू खाई तू खाई फचे लॉस वो उसके बीच टाइम सो खत्म बात हो गई।
1: बिल्कुल,
0: मैं
1: क्योंकि
0: खत्म मैंने
1: जमहूरी
0: मैं
1: मुल्कों में रहते हैं, जमहूरी तरीके से आप बात करें, चूंकि इसको
0: मैंने
1: आप एनालाइज कर रहे हैं, आप तजिया कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, टैक्सी ब्रांच का भी आपको बहुत तजुर्बा है, इसको हर चीज़ को आप समझते हैं, जानते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ आई, चली गईं, ख़त्म हो गई, और अब जो है वो एक नई कंपनी जो आई है उस पर भी जो है उनकी अब गाड़ियाँ हमें हर जगह नज़र आती हैं, और ये भी पता चला है कि कभी वो एक शहर में जाती हैं, कभी दूसरे शहर में जाती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना ये आपसे इन्फॉर्मेशन से बेहतर कौन दे सकता है, या हमारे थिंक टैंक से तोकीर शाह साहब देते रहते हैं जी शायद।
0: जी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जब कोई कंपनी, या पहले तो उबर आई, उबर बहुत बड़ी कंपनी है, तो पूरी दुनिया में फैली हुई है, इसी की तो कोई दौर आई नहीं है, सबको पता है। डेनमार्क में जब उबर आई, मैं पहले नहीं जाता, 2013-14 में इलीगली तरीके से यहाँ के टैक्सी कानून के मुताबिक नहीं आई थी। 2013-14 की बात है, मैं उधर नहीं जाता, वो लंबी बहस हो जाएगी क्या हुआ फिर वो जहाँ से निकल गए, ये सबको पता है। अब 2025 फरवरी रिसेंटली ऑलरेडी इनकी 2024 के अक्टूबर सितंबर में ऑलरेडी कुछ लोगों के यहाँ से इनके साथ रवाबत हुए थे, ऊबर के साथ, कि कैसे आपने आना है, ये भी छोड़ दें, ये सबको पता है। 2025 फरवरी में इन्होंने बकायदा आगाज शुरू कर दिया ऊबर का। ड्राइवर एक टैक्सी कंपनी थी छोटी सारी, जिसके अंदर गालिबन 40-50-60-70 टैक्सियां थी, यहाँ 100 कर लें, उनके साथ मिलके देते छिल खुद कहते हैं, यानी कि उसके साथ अटैच होके आप आ सकते हैं। खाली उबर नहीं की इजाजत नहीं मिली थी उनको, यानी कि गायन उबर, यानी कि बिल्कुल खाली उबर जो है, क्लीन उबर सिर्फ खाली वो चलाती, लेकिन उनको किसी किसी किसी कंपनी के साथ सहारा लेके उनको आना पड़ा, और वो आए। साथ ही उन्होंने यहाँ पर धूम मचा दी। उधर भी हमारे जो पाकिस्तानी वॉनमैन है, मैं भी इंक्लूड हूँ, अपनी बात भी करूंगा, वाले साहब रहे हैं सब समेत, जो मैंने सुना, बल्कि सुना अपनी आ, आ, आ, अपने कानों से सुना, लोगों ने कहा ओ कुछ नहीं होता उबर है इसके, ये ऐसे मैंने बड़ी सेल्स कैंपों के अंदर भी सुना, वहां पे भी कहना शुरू कर दिया कुछ नहीं होता, आप रिलैक्स करें, पाकिस्तानी जैसे स्टाइल है हर चीज में रिलैक्स कर जाए। पता क्या हुआ फिर, उबर ने जनाब इनको ना फरवरी में आई, पर जून जुलाई में जनाब इनका एग्रीमेंट हो गया सबसे बड़ी कंपनी डैन टैक्सी के साथ, यानी जो पहले कुरियर होती थी डैन टैक्सी, जो पूरे शेलन में है, उसके बाद पूरे यूलन में, और पूरे स्वीडन में भी है, दूसरे मुल्कों में भी है। एग्रीमेंट क्या हुआ, उन्होंने खरीद ली, ऊबर ने डैन टैक्सी खरीद ली। ये किसी को नहीं पता कितने मिलियार्ड की खरीदी है या कितने मिलियंस की खरीदी है, कंपनी बहुत बड़ी है, उनके पास इनकम है, इनचेक जिसे कहते हैं वो बहुत ज्यादा है, और उनके पास अवैध खून है, यानी कि उनके पास कंपनी के खोचो खोसला, उनके पास डीएसपी है, उनके पास हॉस्पिटल्स हैं, ये जो होते हैं उनके पास, ये सिर्फ खाली टैक्सी नहीं होती जैसे आप मैंने बुक कराई है, ये तो कोई इसके ऊपर नहीं आपकी कंपनी चलती, इनके पास बड़े बड़े जो है ना आउटसेलिंग एग्रीमेंट हैं डेनमार्क में, खाली को अपने अगर में नहीं है, पूरा शेल एंड उसके बाद यू लैंड और फ्यू सारा बहुत बड़े बड़े कितने मिलियंस की है, 200-300 कपल ऑफ 1300 मिलियंस की इनकी आउटसेलिंग है, वो उन्होंने खरीद ली ऊबर ने, और ऊबर ये जो ना पूरी मार्केट जी तकरीबन वो ले गया तकरीबन। अब क्या हुआ कि 2026 में इन्हें के जून जुलाई जून में ये इसकी बाजगश्त हुई ग्रीन एसएम, यानी के वियतनाम टैक्सी तो नहीं लिखा हुआ लेकिन इसका असल नाम जो है ग्रीन एसएम है। ग्रीन एसएम ऑलरेडी जो है ना वियतनाम और चाइना और इंडिया और इन मुल्कों में आ चुकी है 2025 में, यार वियतनाम तो पहले की चल रही थी, और ग्रीन टैक्सी ग्रीन एसएम जो है इसके बाद स्वीडन, इसके बाद जर्मन, इसके बाद ओस्लो, स्वीडन इसी साल जा रही है। और उन्होंने जो मुझे जो मैंने देखा सुना है, उन्होंने ये चीजें कोई फ्री नहीं होती, उन्होंने ये डेनमार्क में हेसल हॉल यानी कि एवल हॉल जो इंडस्ट्री कुछ है सबको पता है, उन्होंने वहां पर जो बहुत बड़ा ले है जो इसे स्वीडिश में कहते हैं लॉगर, जो ले है वो बहुत ही बड़ा, मैं समझता हूँ 5-6 हजार करोड़ मीटर से ज्यादा कर लें बार भी, वो उन्होंने पहले तो ये समझे थे कि उन्होंने लाया किया है, लेकिन जो मैंने पूछा है उधर उनसे तो उन्होंने कहा उन्होंने खरीद लिया है, तो हो सकता है खरीद लिया हो तो ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि वो उसके उसी को पीछे से या आगे से तोड़ के तो उसका ब्यूगा करने लगे हैं, तो उसके अंदर उनको काफी जो है ना उन्होंने उसको एडजस्टमेंट करनी है, एक तो ये हो गया। अब ये 600 गाड़ियां जो है ना ये इनकी तकरीबन ऑलरेडी 400 या 300 या के करीब ये आधी से ज्यादा गाड़ियां इनकी ऑकुपाइड हो गई हैं जो चढ़ गई हैं, ड्राइवर इनके तकरीबन 500 से ज्यादा जो है या 500 के करीब जो है ना एग्रीमेंट बन चुकी हैं, किसी ने सितंबर में शुरू करना है, किसी ने अगस्त में, किसी ने नवंबर में वगैरह वगैरह, और वो साथ में कोर्स भी करा रहे हैं साथ में। अब किसी कंपनी ने बाहर से इतनी बड़ी इन्वेस्ट की है, वो खाली इन्वेस्ट जो इधर डेनमार्क में की है, स्वीडन में करने जा रहा है, जर्मन में है और यूरोप के मुल्कों में करने जा रहा है, और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका क्या ख्याल है कि उसके पीछे स्टेट नहीं है, उसके पीछे जो स्टेट है वो उन्होंने थपकी नहीं दी? ये ऐसे कभी नहीं हो सकता, ऐसे कोई इन्वेस्ट नहीं करता जब तक मुल्क जो है वो आपको वेलकम ना करें और आपकी हेल्प ना करें, जो जो चीज उन्हें जो जो चीजें उनके चाहिए होती हैं, जैसे कि अब वो भी चाहेंगे कि हमारी हमारी भी औचले हों कमोनो के साथ, फ्लेक्स के साथ, काउंटर खोचले हों, ये वगैरह वगैरह ये चीजें, मेरा ये ख्याल है कि वो इसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं और वो ये मार्केट लेने की कोशिश करेंगे। ये मुझे नहीं पता वो कैसे करेंगे क्यों, लेकिन उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उन्होंने बंदे हायर किए हैं, उनको वो लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल है उनके और वो इसी पे काम करने लगे हुए हैं। हाँ अब मैं आ जाता हूँ, आपने बात की थी वोनमैन, पाकिस्तानी, अरबी, तुर्की, डेनिश, जितने भी वोनमैन है, हम अपनी भी बात करेंगे, पाकिस्तानी ये सबसे ज्यादा है, इनका फ्यूचर मुझे कोई अब अच्छा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मार्केट उन्होंने लेके जानी है, क्योंकि वो खुद ही वॉनमैन है, एक तो ये हो गया कि वो इसे उर्दू में आप आसानी से ये कह लें कि वो एक ऐप नहीं है ग्रीन एसएम, क्योंकि जो उबर है वो एक खाली ऐप है, वो आप ऐप लेते हैं या उसको आप उसका जो 20% या 18% या 25% उसका आप पे करते हैं, लेकिन गाड़ी आपकी अपनी होती है, मैं आपको आसान लफ्जों में बताऊंगा, लेकिन जो ग्रीन एसएम है गाड़ियों की अपनी है, वो खुद ही बॉनमैन है और खुद ही वो गाड़ियां भी बनाते हैं अपनी, वो कंपनी उनकी गाड़ियां भी अपनी ही कंपनी में बनती हैं, और वो कंटेनर के कंटेनर यहाँ यूरोप की तरफ वो रवाना है, जिधर जिधर उन्होंने ये करना है पड़ाव डालना है। अब ये जो चीज है ये मुझे जो शक है ये वोनमैन की मोनोपोली खत्म करने के लिए इन्होंने सिर्फ डेनमार्क नहीं दूसरे मुल्कों में भी जिसे कहते हैं आया है ना छक्सा आया या ना वोनमैन, उसको खत्म करने के लिए इन्होंने कहा कि इसको अपने पास रखो, अपने कंट्रोल में कर लो, इस तरह की उन्होंने कंपनी को दावत दी है जो ऑलरेडी ये काम शुरू कर चुकी थी, तो उनके साथ ये बमामला जो है इनके 1-1.5 साल से बैक चैनल चल रहे थे, ऐसे कोई नहीं आ जाता अचानक, ऐसे कोई नहीं पैसा इन्वेस्ट करता, कहते हैं वो कहते हैं हेल मलियान या इन मलियाड। और आपको पता है कि जो 400-500 ड्राइवर अभी चढ़े आए हैं उनको अगले महीने तनख्वाह भी देनी है, और वो तनख्वाह अभी कोई उनकी इनकम नहीं हुई, अभी उनकी ऑफिसें जो हैं चल रही हैं या नहीं चल रही वो बात की बात है, वो तो आपको पता लग जाएगा सबको। लेकिन उन्होंने लोन तो देना है, कुछ लोगों को लोन मिल गया जिन्होंने ऑलरेडी जुलाई में शुरू किया था काम, अब तो अगस्त का एंड आ गया तो उनको लोन मिल गया मुझे सुनने में, और उनको पूरा लोन मिला है। मैंने खुद पूछा है, मैंने पूछा है आपको लोन मिला है, उन्होंने कहा जी मुझे लोन मिल गया जो इस महीने के उनको मिलना था और मैं जुलाई के, तो वो बहुत से लोगों को मिल
1: इसका
0: गया
1: मतलब है
0: जो
1: कि ये पैसा सारा सिस्टम है आगे, इस पर लेफ्ट राइट नहीं हो सकता।
0: मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप ये देखें लोन मिला ना, क्योंकि हो एल आर के साथ उन्होंने ये जो जो लोन जो यहाँ के शनि के लोन नहीं तनखाओं के जो कानून है कवानीन है पेंशन ऑर्डनिंग के साथ उन्होंने मिलके बनाए हैं, कि इसमें कोई हंकी बैंकी नहीं है, उसमें मिलके बना के उन्होंने वो बैठे हैं उनके साथ बनाए सारा कुछ। उसमें ये जो अभी जो पैसे जो इनके चंद 150 जो पहले थे इनके शोफेयर उनको लोन मिला ना, वो हालांकि उनकी इनकम कोई नहीं हुई ड्राइवरों की, बहुत कम इनकम ना होने के बराबर, क्योंकि उनके ऐप में भी छुआ नहीं है जो आए, वो कल छुआ ही उठा रहे हैं अगर वो उठाते हैं, और अपने 7.5 घंटों में, 7.5 घंटे उसके आधा घंटा पाउस का 8 घंटे, 7.5 घंटे में अपने काम करके जो बनाया है वो ही है, उसके ऊपर वो उनके कोई इतराजात नहीं है इस वक्त, और पहले बाद में भी जब उनके पास ऐप में छुआ आ जाएंगे जो उनकी औचले होंगी, आपने हर छुए को यस करना है, आपने ना ही नहीं करना, क्योंकि आप काम कर रहे हैं आपको वो तनख्वाह दे रहे हैं, वो उन्होंने इसके ऊपर रखी हुई है कुछ परसेंटेज, यानी कि आप किसी को वो क्या कहते हैं वो कहते हैं वॉशरूम भी आ जाता है या वगैरह वगैरह 2-4 मिनट के लिए तो आप उसमें पॉज कर सकते हैं, लेकिन आपका आधे घंटे का पॉज एक लेता है, लेकिन जब आपको छुआ आ रहा है आपने यस करनी है, क्योंकि आप तनख्वाह ले रहे हैं उनसे पक्की, यानी कि फेस्ट लोन ले रहे हैं आप उनसे, तो आप मजाज नहीं है कोई नए करने के किसी छुए के, जब जब ये शुरू होगा उनका बकायदा, अभी तो चल रहा है। और उसमें मैं ये आपको बता रहा हूँ कि लोन मिले हैं 100-70-80 जो शोफेयर पहले के थे वो कितने मिलियंस होंगे, वो उन्होंने अपने जो उनके पास जो उनका अकाउंट या जो भी वो पैसा लेके आए हैं अपने पास से दिए हैं। मैं ये बता दूं कि अपने पास से कोई नहीं देता, ये तो अभी दिए हैं, जब उनकी औचलें वगैरह चल जाएंगी, जब उनके साथ कमोनों के साथ या जिधर भी वो करना चाह रहे हो जाएंगी, कितने वो मिलियंस की इतनी कमोने हैं, सैकड़ों कमोने हैं यहाँ पर शेलन में, जब उनके साथ हो जाएंगी, अगर आदियों के साथ भी हो जाएं जब हो जाएंगी, तो फिर ये जो पैसा उन्होंने अपनी जेब से लगाया है, ऐसी जो जो बिजनेसमैन काबिल बिजनेसमैन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं, वो फिर उनका वापस डबल से ज्यादा वापस आएगा, तो ये है उनकी जो है
1: इसका
0: प्लानिंग।
1: मतलब है उन्होंने
0: और
1: अपना जो इन्वेस्ट किया उसको सबसे पहले सेव किया है, गवर्नमेंट के साथ जो है अपनी बातें कमून के साथ अपने एग्रीमेंट किए हैं जहाँ से ये सिस्टम चलता है। अब वो जो है कोई पैसा जो है वो कोई आगे पीछे नहीं हो सकता कंपनी का।
0: देखिए जी मैंने पहले भी आपको बताया कि ये किसी को

0: जी
1: फैसिलिटेट किया जाता है। चलिए शायद आते हैं
0: इसी तरह,
1: आप इसी तरह जिस तरह आपने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इलेक्शन किस तरह लड़े जाते हैं, पार्टियों में किस तरह लड़े जाते हैं, ये जो कारोबारी लिहाज से जो लोकल ये टक्की चलती है इसका क्या सिस्टम होता है, और आगे बढ़ते बढ़ते दूसरे मुल्कों में ये चीज़ें चली जाती हैं। शायद हमारे मुल्क में जहाँ भी पूरी दुनिया में हमारी सियासी पार्टियाँ सारी खुद कफील हैं पूरे मुल्कों में, उनकी भी टैक्सियाँ वहाँ मौजूद है। मैं कहता हूँ ये जो पार्किंग प्लेस हैं सारी पार्टियाँ ये पार्किंग प्लेस हैं, ये सियासतदानों की टैक्सियाँ हैं, इनकी जो है वो पार्किंग की जगह है। ना कोई हमारा मेंबर बना पार्लियामेंट में, कोपेनहेगन की बात करूँगा, अगर डेनमार्क की बात करूँगा, स्वीडन में आप देखते हैं हमारे कितने मेंबर बनते हैं पार्लियामेंट के बनते हैं, तो कहीं भी हम फिट नहीं हो रहे। अब पाकिस्तान की सारी चीज़ों को मिला के देख रहे हैं तो लेकर ज़्यादा सियासत जो है वो पाकिस्तान की जाती है। आप किस तरह देखते हैं सियासत को पाकिस्तान को?
0: मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये आपने स्वीडन के इलेक्शनों की बात की थी और डेनमार्क के, मैंने यही बताया कि जब तक आप अपनी मुल्क पाकिस्तान की जो सियासत है, अगर ये कोई किसी को अगर गलत लगे, मैं उससे माजत कर लेता हूँ, क्योंकि सामीन सुन रहे हैं, यार पाकिस्तान की सियासत आपको सबको पता बहुत गंदी सियासत है। वो गंदी सियासत को वो कहते हैं समझने के लिए हजारों साल भी कम है। तो वो क्योंकि पाकिस्तान की सियासत तो हर सेकंड बाद बदलती है, और वो सियासत उन्होंने आई तो आप जब उस सियासत को, मैं ये बता रहा हूँ, इधर जहाँ रहते हैं इधर भी करेंगे तो फिर यहाँ पर आप अपना अपना ही मजाक बनवा लेंगे। लोग मजाक करते हैं देख के, ये कोई खुशी नहीं लोगों को हो रही होती, देख रहे होते हैं सारे लोग, से मुराद है कि पक्षनी भी और दूसरी नेशने भी, किसी को खुशी नहीं हो रही होती, वो आपको देख के हंस रहे होते हैं कि ये क्या कर रहे हैं मस्करे सारे। मैं आपने बात की पक्षनी जो सियासत करते हैं यहाँ पर यूरोप में, मैं हाल ही डेनमार्क की बात नहीं कर रहा, तो वो फिर जब आप इस तरह के मस्खरापन करेंगे तो लोगों ने तो आप लोगों में, आप कम्युनिटी में, दूसरी कम्युनिटी में मजाक बनाएंगे। ये जो डेनिश हैं, स्वीडिश हैं, नॉर्वेजियन हैं, जर्मन जहाँ भी चले जाएं, वो आपको देखते हैं, ये नहीं कि उनको सारा पता होता है, वो ये लोग खामोश तबीयत के हैं, खामोशी से सारा कुछ करते हैं, ये बातें नहीं ज्यादा करते, जनरली बात करता हूँ, इनमें भी लोग बुरे होते हैं, लेकिन इनमें भी लोग होते हैं इस तरह के, लेकिन वो जनरली ऐसे नहीं है। ये लोग बातें नहीं करते, ये काम करते हैं। ये नहीं है कि इन मुल्कों में ऐसा नहीं था, इन मुल्कों में गंदी सियासतें नहीं थी, इन मुल्कों में जबरियत नहीं थी। फिर 100 साल पहले ऐसे ही था, 100 साल पहले ये इन्होंने ये सिस्टम जो है ना लड़ लड़ के कौमों ने इनकी कौम लड़ी, इनके लोग लड़े, बड़ी कुर्बानियां दी हैं इनके लोगों ने, खाली जंगे नहीं लड़ी इन्होंने एक दूसरे से, इन्होंने सियासी, ये जो सियासी इसके लिए जमहूरियत के लिए लड़े, यहाँ पर तो बादशाह थी पूरे यूरोप में बादशाह थी पूरे, आपको पता है, आप हिस्ट्री पढ़ें जाके, स्वीडन की बात कर लें, डेनमार्क की बात करें, यहाँ तो जुल्म था, यहाँ ये बादशाह होती है ना जुल्म ही होता है, ये एक बंदा सबको कह रहा है जो मैंने कहना वही आपने मानना है, इधर ऐसे था, लेकिन फिर यहाँ कौमें लड़ी, लड़ने के बगैर आप, कुर्बानियों के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम ही बादशाह के सारा था कब्जे में, बादशाह जो है यूरोप का, यानी कि स्वीडन का या नॉर्वे का, उसके उसके तो इंसाफ वही करता था, जज जो है वो इंसाफ जिस उसने करना है वो बादशाह के हुक्म पर उसने करना है, तो काहे का जज, इधर ऐसे था। फिर ये लोग लड़े, इन लोगों ने कुर्बानियां दी, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कई साल लड़ते रहे, आखिर में ये इनकी जीत हुई, घर बैठने से, हाथ में हाथ बांधने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मसखरापन, फजूलियात, ये चीप हरकतें, यार ये क्या है, क्या हो आप? जब तक आप इन चीजों से नहीं निकलोगे आप ऐसे ही रहोगे जैसे 1400 साल पहले मैंने सुना था कि जहलियत है, आप उससे भी आगे निकल जाओगे। 1400 साल की जो जहलियत सुनते थे ना वो कुछ भी नहीं है, उससे भी आगे निकल जाओगे, बल्कि निकल गए हो। तो ये है कि आप ईद मुल्कों में रह के इन कौमों से जब नहीं सीख पा रहे तो यार फिर तो मैं क्या इसके ऊपर करूं तबसरा, मजीद तबसरा ही पे रह जाते हैं।
1: तबसरा क्या, आप देखें ना, मुनाफिक आदमी जो होता है जिसके मुंह पे होता है उसी का होता है, वो उठ के चला जाता है दूसरे पे चला जाता है, तो यही सियासी पार्टियों का है,
0: यही हमारी जो कौम का, हमारे जो सिस्टम का अलमिया है कि आप देखो क्या कर रहे हो। मैं गालिबन ये चीजें देखता रहता हूँ, कभी देखता हूँ

0: इधर इधर स्वीडन का भी चलो बात कर लेता हूँ यार। स्वीडन के अपने मुल्क की जा रहता हूँ मैं जी। फोटो लग गई है, एम्बेसी के पास बैठा हुआ है, एम्बेसी को अलविदा, अलविदाई, अगर मेरे से उर्दू अलविदाई, उसको सलाम पेश कर रहा है, फोटो लगा दी है। यार क्या हो गया है, यहाँ तो मैंने कभी देखा ही नहीं। यूरोप के जो एम्बेसडर उधर गए होते हैं दूसरे मुल्कों के एम्बेसी में, पता ही नहीं किसी को था कब आ गया क्या ही नहीं। वहां के जो उधर के लोग हैं जिन मुल्कों में, स्पेन में डैनिश रहते हैं, पता ही किसी को डैनिश को नहीं है। स्पेन में डैनिश रहते हैं ना, अमेरिका में डैनिश रहते हैं, उधर एम्बेसडर है ना उनके, आते हैं, किसी को पता, देखिए किसी किसी किसी डैनिश की फोटो, आम शहरी की, एम्बेसडर को सलाम कर रहे जाके, फोटो लाती फेसबुक पे, हाय यार, देख के मुझे हंसी आ जाती है, क्या कर रहे हैं, कभी हो गया यार, चले गए हो आप कोई अपने काम से, उन्होंने क्या फाड़ के लाती, चलो जी हो गए, सलाम जराना पेश, वो तू कौन है जराना, तू कौन होना है जराना पेश करने वास्ते, जोहराना, ये अगर उर्दू मेरी गलत है तो जोहराना इसी को कहते हैं ना खाने को, राजा साहब जोहराना जी आपने पेश कर दी है,
1: बिल्कुल
0: मास्टर
1: ठीक
0: जा
1: बोल
0: रहे
1: रहे
0: हैं
1: हैं,
0: वहां
1: बिल्कुल ठीक बात है,
0: से।
1: बड़ी
0: यार
1: अच्छी बात है, आप पैदा
0: ये
1: यहाँ
0: कोई
1: हुए
0: बात,
1: उर्दू बोल रहे हैं।
0: ये कोई बात है करने वाली यार, ये मैं देख के रहा होता हूँ, फोटो लग गई है यार, इन चीजों से निकल आओ। एम्बेसडर आया एहतराम के काबिल, जा रहा है, खत्म हो गई बात, पैसे हमारे हैं, खजाने से निकल रहे हैं, तू कौन है जोहराना पेश कराने वाला, नो इस तरह आपके मुल्क में ना जो ये ना ये काम खराब हुए हुए हैं, नीचे दिखाने के लिए दूसरे को।
1: इसका हल क्या है,
0: मैं हर एक की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये नहीं
1: इसका
0: कह रहा
1: हल
0: कि मुझे
1: बताएं,
0: कोई
1: हल
0: गलत
1: क्या
0: है।
1: है? आप चूंकि यहाँ पैदा हुए, आप उर्दू भी
0: मैंने
1: बोलते
0: अभी
1: हैं,
0: इसका
1: स्वीडिश भी
0: अभी
1: बोलते हैं,
0: अभी
1: डेनिश भी बोलते हैं, इंग्लिश भी
0: मैंने
1: बोलते
0: आप
1: हैं।
0: मैंने आपको अभी इसका हल बताया है। जब तक आप दूसरे कौमों की तरह, दूसरे जो लोग हैं और भी है ना, उनकी तरह मुनज़्ज़म नहीं होंगे, लेकिन इन्हें मुनज़्ज़म होना नहीं है, मुनज़्ज़म नहीं होंगे आप, ऐसे ही रहेंगे। आप ही आपने खुद ही कहा है, मैं मुनाफ़क़त, हाली मुनाफ़क़त नहीं है, झूठ, मुनाफ़क़त, मकारी, तीन चीजें। मकारी आपके मुंह के पर नजर आ जाती है जब वो मुस्कुरा रहा होता है कि ये मकार आदमी, मुनाफ़क़त तो है ही है, मकारी सबसे बड़ी चीज है, फिर झूठ, ये तीन चीजें। आप मेरा वो डीपी देखें, बड़ा
1: शायद एक
0: मशहूर है मेरा
1: बात
0: डीपी।
1: याद रखें कि पिछले दिनों बहस हो रही थी कि बीमारियां होती हैं ना, एक मालिया खौलिया की बीमारी होती है, हम इसी को लेते हैं, कोई ज़हनी मरीज किसी को कहता है, लेकिन और भी बीमारियां हैं, अगर देखा जाए तो बंदों का कसूर भी नहीं होता, वो चूंकि वो
0: बिल्कुल नहीं
1: बीमारियां
0: होता।
1: उनको लगी होती हैं, आप उनका इलाज नहीं कर सकते, इसलिए
0: अभी
1: साइकियाट्रिस्ट
0: आप
1: जब बैठता है ना, वो उसको घंटा घंटा दो दो घंटे पर टाइम देता है, खाली उससे बातें करते रहते हैं, वो ज़हनी मरीज इस तरह के होते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते इसको ये बीमारी है।
0: राजा साहब, अभी आप को आप मेरी वो डीपी जो है ना उसके बारे में आप चर्चा करते हैं, तो काइंडली वो डीपी जो है मेरी, उसका जो सामने जो मेरा वो है, उसको वर पढ़ें, अभी पढ़ें तो, ताकि आपको मैं बताता हूँ क्या है वो।
1: बड़ी अच्छी बात है, और आप अक्सर बात इस पर करते भी रहते हैं, लिखा हुआ है आपकी जो शराखत है, जो आपने अपने लगाया डीपी लगाया हुआ है, मुनाफ़क़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह पे ऊपर दोस्ती का नाम है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत अल्फाज हैं, शेर लिखे हैं, ये सबके लिए, ये किसी की मुखालफत में नहीं है, किसी के हक में नहीं है।
0: ये चीज, जब ये चीज आप खत्म कर देंगे ना, ये जो कौम है पूरी, आपकी हर चीज ठीक हो जाएगी, सिस्टम भी ठीक हो जाएगा, लेकिन ये है मुश्किल काम है हमारी, खासकर कौम हम लोगों के लिए मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। लेकिन जब ये चीज खत्म हो जाएगी ना, ये जो मैंने अभी अब लिखा हुआ है ये सारा, तो आप जो है ना राह रास्ते में आ जाएंगे, लेकिन मुश्किल और कठिन है, ये नहीं पता कब है, शायद 100 साल लग जाए, 100 साल बड़ा, शायद 1 साल में खत्म हो जाए, लेकिन 100 साल में पता नहीं, हम रहे, हम तो नहीं होंगे, आप भी नहीं होंगे, हमारे बच्चे भी नहीं होंगे, तो 100 साल किसने देखा है, लेकिन वैसे भी ऑलमोस्ट हमें
1: शायद
0: 78 साल हो
1: लेकिन
0: गए हैं।
1: इस जमहूरी निज़ाम में अब हम जमहूरियत की भी नफ़ी करना शुरू हो गए हैं, ये भी प्रोपगंडा हम लोग शुरू कर देते हैं। इस जमहूरी नाम रहते हुए अगर आपको वोट मिले, आप मेंबर बन गए, आपको वोट मिले हैं तो अभी रीजन के मेंबर मिल गए, अगर आपको वोट मिले हैं तो आप पार्लियामेंट के मेंबर बन गए, पार्लियामेंट को आप वोट मिले हैं तो आप वज़ीर आज़म बन गए, ये तो एक जमहूरी निज़ाम है, कौन किसी को रोक रहा है?
0: कोई किसी को नहीं रोक रहा। और राजा साहब एक और बात, जब आप इलेक्ट हो गए हैं, आते हैं ना आवाम आपको सिलेक्ट करती है, तो फिर इलेक्ट हो गए हैं आप, तो आप उसमें आ गए हैं। तो जब आपने किसी वद में, ये इधर की बात कर रहा हूँ अपने यूरोप की, तो हमारे जो ओवरसीज पक्षनी हैं, भाई हैं, बहने हैं, तो वो जो वादा करते हैं ना, वो फिर अपना वादा 100% नहीं तो कम से कम 80-90% पूरा किया करें अपनी अपने अपने क्या कहते हैं वोटरों के साथ। ये मेरा बार बार कहना है। तो मैं आप वाली बात फिर, जब तक आप अपने सारे ओवरसीज पूरी दुनिया में, जब तक आप पाकिस्तानी गंदी सियासत, गंदी तरीन सियासत है, अच्छी सियासत भी लोग करते हैं लेकिन गंदी तरीन सियासत को आप खत्म नहीं ना करेंगे, आप तरक्की भी नहीं कर सकते किसी चीज में। यूरोप में भी पीछे रह जाएंगे हर एक से, हर महाज में पीछे रह जाएंगे, नहीं कर सकते तरक्की। ये क्योंकि यही अल्लाह ताला का असूल है, यही कानून है। अल्लाह ताला के असूल और कानूनों को तो नहीं अवरद कर सकते ना। अल्लाह ताला तो देख रहा है हर वक्त, अल्लाह ताला तो आपको लम्हा लम्हा देख रहा, सुन रहे, उसके साथ तो नहीं ना आप कहते मकारी यारी कर सकते। यारी भी तो करते हैं ना हम लोग,
1: देखे ना अल्लाह अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जिन चीजों से मना किया, क्या वो काम हम करते नहीं है?
0: हम वो काम नहीं करते। अल्लाह ताला ने जिन चीजों से मना किया हम वो काम करते हैं। अल्लाह ताला के रसूल ने जिन चीजों से मना किया वो काम कर रहे हैं, इसलिए तो ऐसे हो रहा है। लेकिन ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं, ये दीन को भी इस्तेमाल करते हैं यार, दीन को भी, दीन भी आज, कुरान भी आपको आज कल पैसों में बिकता है, दीन भी आपका बिक रहा है पैसों में। यानी कि सुबह दीन को इस्तेमाल करता है, रात को शैतान बना होता है बंदा, वही दोबारा सुबह या रात को शैतान है वो पूरा। सुबह वो दीन को इस्तेमाल कर रहा है टोपी पहन के, अल्लाह अल्लाह कर रहा है, वो क्या खत्म हो रहे हैं आदमी शरीफ के फलां जगह, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यार दीन को तो ना इस्तेमाल करो। फिर अपना दीन आप अपने पास छुप के अल्लाह के साथ करो, इसका चर्चा ना करो ऐसे। चर्चा वो करते हुए अच्छा लगते हैं जो माशरा सुलझा हो, जिसमें कोई हलाकियात हो। जिस माशरे में हलाकियात नहीं, वो अपने दीन का क्या चर्चा करेंगे? क्योंकि उसने तो अपने आप से शुरू करना है। मैं कैसे चर्चा करूं अपने दीन का? हमारे मुल्क में चले ले लेते हैं, कोई हलाकियत ही नहीं है, बेहयाई ऊपर उधर रूज पर, उस पर बात करेंगे तो हंसेंगे कैसे? ये तो यार आप क्या बात कर रहे हैं शाह साहब, यहाँ तो ये तो आम हो गई है चीजें यहाँ पर।
1: मुफ्ती कवि कितने देखे हुए हैं पाकिस्तान में?
0: क्या अब मैं क्या बात करूं इनके ऊपर?
1: ये देखिए, मैंने आपकी बात को आगे बढ़ाया, शायद ये देखें, ये जो बच्चे यहाँ पैदा हुए ना, ये अब सवाल करते हैं, जिस तरह आप ये बातें कर रहे हैं ना, आप यहाँ पैदा हुए हैं, आप यहाँ को देख रहे हैं, तो सवाल करते रहे, मुनाफ़क़त की बात करते हैं। आपने लिखा हुआ है कि मुनाफ़क़त दरअसल पुश्त के पीछे दुश्मनी नहीं बल्कि मुंह के ऊपर दोस्ती का नाम है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहे हैं और छुपा के नहीं कर रहे। आप देखें ना मुनाफ़क क्या होता है, कई दफ़ा हमने इस पर जो है प्रोग्राम किए, कई दफ़ा उलमा ने इस पर बात की। अल्लाह ताला कहता है कि जो मैं मुनाफ़क़ को माफ़ नहीं करूँगा, जो मेरे मुकाबले में खड़ा होता है उसको माफ़, जो मेरे साथ किसी को जोड़ता है मैं माफ़ नहीं करूँगा, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें मैं माफ़ कर दूँगा। जन्नत दोज़ख किस लिए बना? जन्नत दोज़ख कोई मजाक तो नहीं है, जन्नत दोज़ख बनाए गए इन्हीं वजहों से बनाए गए हैं, तो ये सजाएं मिलेंगी। वो कोई बंदे कहते हैं जी बस एक बार पढ़ने से 10 हज का सवाब हो जाता है, फिर हज का सवाब पढ़ने का हो जाता है तो खाना काबा में क्यों जाते हैं, आज उधर हज करने के लिए क्यों मक्का मदीना जाते हैं? तो ये बहुत सारी चीजें हैं,
0: मैं इसमें एक बात और ऐड कर दूं अगर आपकी इजाजत हो।
1: जी जी,
0: एक तो ये चीजें हैं ना, अगर आप मेरी, अगर लोग दोस्त यहाँ पर जो सुन रहे हैं सामीन, वो इसको समझेंगे, आप भी समझेंगे। एक तो हमारे में ये बहुत ज्यादा है, एक इसको मुनाफ़क़त ही कह लें, तल्लुकात की बेस पर, यानी कि तल्लुकात बनाते हैं यार, यानी कि यार आपको पता है कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन पता है आपको सच क्या है, लेकिन आप तल्लुकात की बेस पर आप वो सच को जो छुपा रहे हैं, यानी कि उसे मुंह फेर रहे हैं। यानी कि मैंने ये पढ़ा था, अगर गलत ना हो जाए, क्योंकि मैं ये कोड यहाँ गलत नहीं करना चाहता, किसी हदीस में पढ़ा था कि किसी सहाबा ने फलां, मैं यहाँ गलत ना हो जाए क्योंकि मैं, मेरे पास ऑफिस में नहीं हूँ, मैं देख नहीं सकता, पूछा कि आपके पीछे तो आप अकेले रह गए हैं, उधर तो हजार बंदा खड़ा है। उसने कहा अल्लाह ताला के अकामत के खिलाफ अगर हजार बंदा भी हो जाए, मैं अकेला रह जाऊं तो मैं सच के साथ ही खड़ा होऊंगा। ऐसे ही है ये लोग, ये लोग पता क्या करते हैं, वो यार उधर तलुका दी कोई नहीं, उधर तो जानते ही कोई नहीं, ये साढ़े नाल भी हजार बंदा है, 100 बंदा है, 200 बंदा खलोता था, ऐसे बात करते हैं ये। ऐसे ही हम लोग हो गए, यानी कि तल्लुकात की बेस पर एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, चाहे वो गलती सही है चाहे मैं गलत हूं। आपको पता है कि
1: आपको पता है कि
0: जो बंदा कोई भी हो दुनिया में, आपने तारीख पढ़ी है, जो सच की बात करेगा उसके उसके उसके दुश्मन होंगे सिर्फ, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, ना उसके दोस्त होंगे। यही अल्लाह ताला को पसंद है।
1: आप देखें, जब बात की जाती है ना कि सारी दुनिया में आप देख लें कि बाद जगह आपको पता है कि गुलाम खरीदे जाते थे, मंडियां लगती थी, उनकी कीमत दी जाती थी, ठीक है। गुलामों में भी किस्में होती थी, कितनी कीमत का गुलाम है कितने में, और दूसरा गुलाम दूसरे को बेहतर मिलते थे, मालिक गुलाम को बेच देता था, ये हमने सब पढ़ा। लेकिन हम 2026 में रह रहे हैं, यहाँ भी गुलाम बिकते हैं, सियासी गुलाम।
0: देख लें आप,
1: 2026 तरीका होता है ना, यहाँ भी हम यहाँ की बात करते हैं, डेनमार्क की, इनका तो आइन है, कानून है, हमें इत्राम करना चाहिए, ये कानून के अंदर रहते हैं, कानून के नीचे रहते हैं, इक्वल राइट्स की ये हमायत करते हैं, शादी की इजाजत है, तो क्या मुसलमान खरीदते नहीं है जाकर, उनके गलों में हार नहीं डालते?
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात की आपने।
1: तो ये बहुत सारी चीजें, हम रियलिटी से पीछे हट जाते हैं, हम अपनी तसल्ली करने के लिए, भाई यहाँ का कानून है, जिस मुल्क में आप रहते हैं उसका आइन में इसको जो है उस पर लिखा हुआ है, तो हमें क्या कि जिस मुल्क के हम किसी के मुल्क के आइन की मुखालफत कर सकते हैं? रहते हैं हम ये डेनमार्क में, सियासत हम पता नहीं कहाँ की कर रहे होते हैं। आप बंदे हमारे यहाँ आ जाते हैं, जो आप मैं भी वो जो कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें कहता रहता हूँ, बहुत सारे आलम बन जाते हैं, सियासी आलम बन जाते हैं, हम एक दूसरे के पीछे बैठे हुए गाली निकाल रहे होते हैं, और मुझे कितने लोगों ने सबूत दिए, मुझे शर्म आती है, वो सुन के भी शर्म आती है, यार ऐसे भी लोग हैं। फिर जब हम बीमारियों की बात करते हैं, तो अब मेरा यकीन हो गया कि ये बीमारी एक किस्म की ज़हनी नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, या ज़हनी मरीज एक बीमारी नहीं होती, ये बहुत सारी बीमारियाँ, ये ठीक ही नहीं हो सकती। जो आपका दोस्त आपके पीछे बैठे आपको गाली निकाल रहा है, वो आपका दोस्त अब बीमार आदमी है वो।
0: देख लें फिर राजा साहब क्या चल रहा है। अब आपने खुद ही इसकी सारी तशरीह कर दी है, तो मैं
1: शायद आप इजाजत लेते हैं, आप भी मुझे पता है मसूद है, आप आपस में मौजूद नहीं,
0: नहीं आप कोई नहीं, आप कोई नहीं बात करें, मैं कोई ये भी नहीं अब कह सकता कि इनको हदायत दे, कितनी बार कहूंगा या कितनी बार कहेंगे हम आपस में एक दूसरे को, हमें हदायत दे सबको। हदायत तो अल्लाह तआला ने, तो मुझे लगता है आपको पता है, मेरे ये पढ़ा हुआ है कि तौबा के दरवाजे बंद हो जाने एक दिन अचानक ही, तो मुझे तो लगता है कि इधर तो तौबा के दरवाजे पहले ही बंद हो गए हुए हैं, इधर हमारे ऊपर, इस कौम के ऊपर, कि तौबा ही कोई नहीं, कोई दुआ ही नहीं कबूल हो रही। बता दें कोई दुआ कबूल हुई हो? दुआएं करते हैं ना सारे, हमारी माँ बहनें बेटियां सब कर रही हैं, मुल्क के ऊपर भी कर रही हैं, सब के ऊपर, कि हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, कोई कोई दुआ कबूल हो रही है। मुझे लगता है कि यहाँ तो अल्लाह ताला ने तौबा के दरवाजे, अल्लाह ताला नाराज है बड़ा सख्त। अकल भी तो काम करती है ना, कुरान पाक पढ़ा हुआ है आपने उर्दू के साथ इंग्लिश के साथ, उसको तो बार बार पढ़ेंगे आपको समझ आएगी। उसमें अल्लाह ताला ने यही चीजें फरमाई हुई हैं कि मैं मेहरबान हूं नहायत, अपने इंसान के ऊपर बहुत मेहरबान, अल्लाह ताला बहुत प्यार करने वाला है इंसान को, तो अल्लाह ताला ही वो कहता है कि उसको हो जाता है कि मैं अपने इंसान को कोई ना पहुंचाऊं, चाहे वो जितना मर्जी जालम भी हो, कर देता है, शिर्क नहीं माफ करता अल्लाह ताला किसी को जो उसके अगेंस्ट हो आ जाए कि मैं खुदा हूं। और दूसरी बात ये अय्यारी मकारी और झूठ और मुनाफ़क़त, तो देख लें आप,
1: शायद
0: हम कितने
1: लोगों ने एक अपना बनाया हुआ है ना। अब यहाँ जितने भी मेले हुए हैं, जितने भी, और इसमें कामयाबी का राज क्या था? मैंगो फेस्टिवल, उसमें आम लगे हुए हैं, लोग जो है वो जा रहे हैं, ख्वातीन जा रही हैं, बच्चे जा रहे हैं, फैमिली जा रहे हैं, कहीं सहूलियात ज़्यादा हैं, कहीं सहूलियात थोड़ी हैं। जो मैंने एनालाइज किया है कि लोग दिनों पे नहीं जाते, लोग स्टालों पे जाते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सफा साबित हुई हैं।
0: बिल्कुल इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि अभी आपने खुद ही बताया कि लोग यहाँ पर कोई छोटी मोटी इंटरटेनमेंट चाहते हैं, इस तरह की इंटरटेनमेंट जो हटके, दूसरी चीज़ों से हटके जो की है, स्टालों में कर लें। मैंगो फेस्टिवल एक, जिसे आप कहते हैं पाकिस्तान का भी लगता है पता कि ये पाकिस्तान के आम है, इधर अंग्रेज लोग भी आते हैं, डैनिश भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, इंडियंस भी हैं, सिख भी हैं, मैंने देखे हैं। बहुत से लोगों को पता लगता है कि ये पक्षन के आम है, और कईयों को नहीं पता, फिर पता लगता है ये खासकर डैनिश लोगों को आते हैं। और फिर इस तरह आप ये जो है ना आपकी मशहूरी होती है, इन चीजों को करें हाईलाइट, बजाय कि आप गंदी सियासत करें उसे आप हट जाएं। ये बाकी सबके अपना अपना है, एक राय है ना मशवरा है ना
1: जमहूरी
0: किसी को।
1: मुल्क है, हर
0: हाँ
1: आदमी का हक है, उसे हक है जो यहाँ
0: हाँ
1: बोलने की आज़ादी है, कहने की आज़ादी है, जहाँ कानून ने इजाज़त दी है कानून कहता है, लेकिन कुछ हदें ऐसी होती हैं जो इंसान को खुद भी ख्याल करना पड़ता।
0: बिल्कुल ठीक फरमाया आपने।
1: एक बंदा कहता है यार मुझे कानून इजाज़त देता है, तो खुद भी कुछ चीज़ें होती है ना, खुद भी बंदा कह लगता है यार मैं किसी के दीन की बात गलत ना करूं, उसका दिल हार्ट होगा, तो ये बंदा खुद भी कह सकता है। अब कानून में यहाँ बहुत सारी चीज़ों की इजाज़त है, लेकिन ये तो नहीं आपने सब कुछ वही करना है।
0: यहाँ पर मैं ये बात कहते चलूं, आपने चले ये बात कर ही दी है, किसी के दीन के बारे में खास कर हमें ये बात करते हुए अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम पहले खुद अपने दीन के मुताबिक चल रहे हैं। जो जो हकामत आपके रब ने और आपके रसूल ने दिए हैं उसके ऊपर आप पूरी तरह पहले अमल कर लें, क्योंकि आपके ऊपर सवाल हो सकता है। आप किसी के दीन के ऊपर, और वैसे भी हमें किसी हमारे दीन ने ये सिखाया कि आप किसी के दीन के ऊपर किसी किस्म का कोई फतवा या किसी किस्म का ये नहीं लगा सकते कि आप ये करें। और जिन मुल्क ममालिक में आप हम रह रहे हैं, डेनमार्क स्वीडन में, हम यहाँ पर एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, ओवरसीज और दूसरे जो मुल्कों के लोग हैं हम यहाँ पर आए हैं, जब फिर हमने हमने इनके ममालिक के कवानीन का एहतराम करना, ये हमारे दीन में भी है, ये और दिनों में भी है, लेकिन हमारे दीन की मैं बात कर रहा हूँ, हमारे दीन में भी है। आप यहाँ पर जबरदस्ती कोई चीज मसला नहीं थी, कानून को आप ये नहीं कर सकते कि ये कानून मुझे पसंद नहीं है तो लिहाजा है, लोग शिद्दत पसंदी जो है यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाती। ये ऐसी है कि जब आप अपने मुल्कों में जाते हैं तो आपके साथ वहां क्या होता है, शिद्दत पसंदी करते हैं तो क्या
1: शायद
0: करते हैं,
1: मैं
0: आपको
1: पता नहीं बात
0: नंगा
1: करने
0: करके,
1: लगूं,
0: नंगा करके लटका के मारते हैं आपको। इधर
1: शायद
0: जब
1: मुझे
0: आप
1: एक
0: आके
1: बात मैं
0: करूंगे
1: करने लगूं कि सारी सियासी जमातों का मंशूर होता है, क्या सारी जमातें अपने मंशूर पर अमल करती हैं जो उन्होंने खुद मंशूर बनाया होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था वो मंशूर ही था ना, और क्या था?
0: बिल्कुल
1: ठीक है वो मंशूर था, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मंशूर पर हम अमल करते हैं,
0: बिल्कुल नहीं,
1: कोड हम करते हैं? इसी तरह ये जो होता है ना, जब तक आप अपने मंशूर पर अमल नहीं करते, आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आपको दीनी लिहाज से जाते हैं, उस मंशूर पर अमल नहीं करते, हमारा तो किसी बंदे से गिला बनता ही नहीं है।
0: नहीं हम उस मंशूर को कोड करते हैं या उसको हर अमल नहीं करते, कोड करके लोगों को बताते हैं जिसमें उसने कोई अपना मफाद हासिल करना हो, ये भी बताएं।
1: सही बात, सही बात।
0: बिल्कुल
1: तो शायद आपका बहुत शुक्रिया, आप ऑफिस से बाहर हैं, आपने कीमती टाइम दिया, मुझे पता है काम करने वाले का बंदा कितना कीमती टाइम होता है, छुट्टी का दिन है, तो ये छुट्टी के जो दिन होते हैं हमने 35, 36, 40 साल के करीब जो है अपनी आवाम के लिए दिए हैं। आज आपका भी छुट्टी का दिन है, मेरा भी छुट्टी का दिन है, जो हमें सुन रहे हैं उनकी भी छुट्टी है, वो तो गाड़ियों में बैठे हुए, दुकानों में बैठे हुए, पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए, दुनिया के किसी हिस्से में बैठे हुए सुन रहे, वो तो बड़े इन्जॉय करते हैं। मैं भी जब बैठता हूँ कभी गाड़ी में, कभी दोस्तों के पास, तो जब कोई प्रोग्राम लगा हो तो मैं भी बड़ा इन्जॉय करता हूँ।
0: राजा साहब, मैंने मैंने चले थोड़ी मजाकन बात भी कर लें, मैंने तो आपको छुट्टी पर ही देखा है, 25 साल
1: तो
0: नाज
1: आप
0: आ रही
1: देख
0: है।
1: लेना, जो कहते हैं कि हम लोगों ने किया क्या है, जो मजाक की तरफ, हम जब मजाक पे आते हैं, जिन लोगों ने काम किया होता है उन्होंने किया होता है, किसी ने भी किया, अगर कोई बंदा आपको पसंद नहीं है लेकिन उसने ज़िंदगी में कोई काम किया हो, तो उस काम की तो बंदा जो कहता है यार इसने किया हो, बंदा मुझे पसंद नहीं है, इसने काम तो किया हो, ये एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट नहीं करते, वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, गीबत की तरफ चले जाते हैं, मुनाफ़त की तरफ चले जाते हैं।
0: राजा साहब, अगर कल को फर्ज करें मुझे कोई शील्ड मिल गई है, मैं वैसी बात कर रहा हूँ, मुझे भी नहीं कोई छोड़ेगा कि इसको शील्ड क्यों मिली है। ये है इधर जो कौमे है ना, ये इधर की जो है जाम
1: नहीं
0: रहते हैं जिन
1: उसमें
0: माशरों
1: चंद
0: में,
1: लोग होते हैं, देखे ना कहते होते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, क्या मछली तालाब गंदा कर सकती है? क्या
0: नहीं मछली तो नहीं
1: मछली नहीं तालाब गंदा कर सकती? वो कहते हैं एक मछली,
0: कर,
1: इसकी वजाहत है। इसी तरह चंद लोग होते हैं जो डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं और उस पर जो है ना उस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपने दिल को तसल्ली देते हैं। हर इंसान को अपनी खूबी का भी पता है, खामी का भी पता है, दोस्ती का भी पता है और दोस्ती ना होने का भी पता होता है, मुनाफ़त का भी पता है। लेकिन ये चंद लोग होते हैं, शायद इतनी ज़्यादा लोगों की तादाद नहीं, बहुत यहाँ सादे लोग हैं, बड़े सिंपल लोग हैं। ये बच्चे बड़े मासूम हैं, इनकी तख्तियों, ये बच्चे पैदा होते हैं, इस तख्ती पर कुछ नहीं लिखा होता, ये हम इनकी तख्ती पर लिखते हैं और उसके बाद बच्चों को ख़राब कर देते हैं। बच्चे जो है यहाँ पैदा, बच्चा कौन पैदा होता है, उसके माथे पर लिखा होता है कुछ? कुछ भी नहीं लिखा होता। आप अजान देते हैं, अगर मुसलमान पैदा हुआ तो अजान क्यों देते हैं आप? अच्छा, अजान दी जाती है, इसी तरह क्रिश्चियन है वो उसको अपने निज़ाम से करते हैं, दूसरे मजाहब हैं वो अपने निज़ाम से करते हैं। तो मैं तो सब मजाहब की जो है इज्जत करता हूँ शायद।
0: जी, और यही ऐसे ही करना चाहिए यहाँ पर रह के। अब आप अगर आपको ये चीजें नहीं अच्छी लगती तो फिर यही है, आपको डैनिश कहते हैं कि आप यहाँ से चले जाएं। अगर आप नहीं इनके कानून के मुताबिक चलना चाहते, सऊदी अरब में चलते हैं ना इनके कानून के मुताबिक, वहाँ कितनी सख्त सजाएं हैं, वहां तो आप चुप करके सर झुका के चलते हैं। जो उधर लोग जो काम कर रहे हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बंगाली जो भी हैं, जो कौमें वहां काम कर रही हैं, तो इधर आप क्यों जो है इनकी वायलेशन करने की कोशिश करते हैं आप? उन मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ये बात कर रहा हूँ, जनरली बात कर रहा हूँ कि उसमें कुछ लोग करते हैं और उन्हीं के ऊपर ये इन्होंने शिकंजा जो है ना टाइट किया हुआ है और कर रहे हैं इधर, और मजीद जो कानून लेके आ रहे हैं यहाँ पर जो गैर मुल्की हैं, चाहे कोई भी है। तो आपको भी पता है इस बात का,
1: शायद जो नए कानून आ रहे हैं इस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा।
0: थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह
1: सामान। नाज़रीन, ये थे शायद नसीम जो के आपसे बात कर रहे थे। समाइन, हमारी बात जो होती है सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए होती है, हमारा किसी से मुतफिक होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप बात करना चाहते हैं, आप टाइम लेना चाहते हैं, तो आपके लिए किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। आप अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं, आप अभी बात करना चाहते हैं आप अभी बात कर सकते हैं, कोई किसी किस्म की पाबंदी नहीं। हमारे साथ साथ रहिएगा,
2: ये रेडियो आपकी आवाज़ है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज़ सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: पाकिस्तान पाकिस्तान सामान नाजरीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज के स्टूडियो से बराह रास्त आपकी खिदमत में लेकर हाजिर है। मिले जुले पैगाम आ रहे हैं, अपने अपने तरीके सब जो है वो बात कर रहे हैं। छुट्टी का दिन है, धूप निकली हुई है, हवाएं भी चल रही हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के चेयरमैन मोहतरम जनाब मास्टर याकूब साहब, जो कि हमारे फोरम का साथी भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मां साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं और कामयाब प्रोग्राम पर भी आपको मुबारकबाद देते हैं।
2: बहुत शुक्रिया, मैंने आपको फोन किया है कि मैं आपको भी मुबारकबाद दूँ कि कल हम जुमे को हमारे लिए बहुत बड़ा दिन था। आपकी तमाम मेहनतें जो हैं उनको कबूल किया गया है, आपकी जो कोशिश है उसको कबूल किया गया है, और एम्बेसडर साहब ने आपको जो मेडल दिया है उस पर मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। राज साहब, आपने बहुत कोशिश की है कम्युनिटी के लिए, आपने बहुत कुछ सिखाया है, आप 50 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं, आपने एक जिंदगी का हिस्सा जो है इसमें डाल दिया है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हम आपके बजाना में कि आपको शील्ड मिली है, और एम्बेसडर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आपको शील्ड दी है। ऐसा यही है आबादत, यही दीन और ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान, तो आपने बहुत खिदमत की है, आप बहुत मदद कर रहे हैं, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, आप बच्चों की तालीम तरबियत कर रहे हैं, आप बल्कि बड़ों की तालीम तरबियत कर रहे हैं। आपका रेडियो जो है ये स्कूलिंग है हमारे लिए, ये थॉट ऑफ स्कूलिंग है, हम बहुत सीखते हैं इससे, हमें बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें खबरें मिलती हैं, हमें तुरात कुरान पाक मिलती है, कुरान पाक का तर्जमा मिलता है, हमें नातें मिलती हैं, हमें क्या नहीं मिलता, हमें सब कुछ मिलता है, लेकिन जो कदर है वो कदरदानी करता है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा आपने अम्बेसी पर तनकीद भी करते हैं, लेकिन जो समझदार लोग होते हैं वो तनकीद को तस्लीम करते हैं। आज अम्बेसी साहब ने आपकी तनकीद को तस्लीम किया है कि तनकीद आपकी वाजिब थी और उन्होंने आपको शील्ड दी है योम आजादी के मौके पर। तो राय साहब, बहुत बड़ा काम है, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी के लिए भी ये तोहफा है, मेरे लिए भी तोहफा है, क्योंकि मैं आपके कम्युनिटी फोरम का मेंबर हूं, तो बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला आपको और काम करने की तौफीक दे। ऐसा अगर इंसान ना जाने तो खुदा जरूर जानता है, नेकी को अगर इंसान नहीं जानता तो खुदा जरूर जानता है, और खुदा ही अल्लाह ताला ही लोगों के दिलों में डाल देता है कि ये काम करो और वो काम हो जाता है इंशाल्लाह। आपकी जो खिदमत है ये खामोश खिदमत है और नेचर इसको जानती है, अल्लाह उसका रसूल जानते हैं कि ये बहुत बड़ा काम है कि किसको तबलीग करना, अच्छे काम तबलीग करना, तो आप तो यहाँ पर डेनिश सोसाइटी जो है उसके बारे में तबलीग करते हैं, आप तो पाकिस्तान सोसाइटी के बारे में तबलीग करते हैं, आप तो इस्लाम के बारे में तबलीग करते हैं, लेकिन सिर्फ जाने आए लोग जाते हैं, जिन लोग नहीं माना उन्होंने पैगम्बरों को नहीं माना, उन्होंने नबी को नहीं माना, लेकिन आपका काम है काम करते जाना, इंशाल्लाह आपको तरक्की मिलेगी और हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। बड़ा दिल खुश हुआ है राय साहब, तो बहुत अच्छा है, योम आजादी की मुबारक हो, नबी पाक का मिलाद का महीना है आपका मुबारक हो, 150वीं कादिर रहमतुल्लाह की सालगिरह है, सब लोगों को मुबारक हो, मैं दिल के अग्रणी को सबको सलाम करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ। राय साहब, चलते चलते एक बात कर दूं अगर जा सको तो।
1: जी मां साहब, बात जरूर करें।
2: राय साहब, कम्युनिटी जो है वो तरक्की करती है जिसमें डिसिप्लिन हो, जो कोई सीखे, जिस कम्युनिटी ने सीखना नहीं है उसने कोई तरक्की नहीं करनी। तो मैं बहुत सी बातें करने वाली हैं, लेकिन हमारा प्रोग्राम था उसके बारे में थोड़ी बात करता हूँ। राज साहब, हम सुस्त हो जाते हैं, हम कुछ परवाह नहीं करते हैं, हमने बहुत से लोगों को मैसेज किया था तकरीबन हफ्ता दो हफ्ते पहले कि आपने इस तरीके को आजीज नहीं है, आपने आना है, तो डांस का असूल है कि जब भी कोई शादी की दावत हो, कोई प्रोग्राम हो, तो उस पर वो वापस मैसेज करते हैं कि हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हम आ सकते हैं, वी आर सॉरी। सॉरी कहने से कोई कोई बंदे का नुकसान नहीं होता, लेकिन अगला जो बंदा उसको पता चल देता है कि हमारे 30 या 40 मेहमान हैं, इनमें से इतने कम हैं, तो 3 दिन पहले इतला दी जाए तो वो और लोगों को अपनी मर्जी से बुला सकता है। एक बात तो ये जरूरी है। दूसरी बात है, उस बंदे की यह जिम्मेदारी बनती है कि जिसको कोई मैसेज मिलता है अगर कोई बुलाता है तो उसको इतला दे ताकि उसका नुकसान ना हो। अगर आपने 40 बंदे का बंदोबस्त किया है खाने का, तो अगर 30 बंदे जाते हैं तो हमने 40 की पेमेंट करनी है, अगर ज्यादा जाते हैं तो फिर भी हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल में ये एक मैं नहीं कहता कि हमारे बंदे कमजोर हैं या लेकिन सिर्फ सुस्ती कर जाते हैं, सुस्ती नहीं करनी चाहिए। हमको इन चीजों से उजागर होना चाहिए, हमें यूरोप से सीखना चाहिए। बेशक ये काफर हैं लेकिन ये असूल हैं। मैं आपसे पूछता हूँ राजा साहब, डिसिप्लिन क्या है? हम कहते हैं कि काजम का फरमान है डिसिप्लिन, डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन यही है कि अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन लाओ, यहाँ के अच्छे असूल सीखो, असूल सीखो। हमने क्या सीखा है? इसमें मैं गिला नहीं कर रहा, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी जो मैंने कर दी है, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन बेहतर ये होता है कोई शादी का प्रोग्राम हो, कोई निकाह का प्रोग्राम हो, कोई आपको एम्बेसी वाले बताते हैं तो कम से कम ऐसा कह दें मैं सारी हूँ, मेरा और प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोग्राम चलते हैं। जिस तरह कल 3-4 प्रोग्राम थे, अगर कोई बंदा कह देता है तो उसके उसके जगह बंदा और ले आता है। लिहाजा ये एक मशवरा था, कोई ना ही तो हुक्म है ना ही कोई किसी के साथ कोई, मैं मदद चाहता हूँ सबसे, लेकिन हमें थोड़े से असूल सीखने चाहिए। यहाँ पर वक्त की पाबंदी होती है। हमने 6 का टाइम दिया था, कल बंदे 7 बजे भी आए हैं, तो फिर उसका मजा नहीं था, प्रोग्राम बंदा शुरू नहीं कर सकता। मेहमान जो है उन्होंने दूसरी जगह जाना था है, तो फिर वो 1-6 बजे अगर अच्छे 6:05 हो जाए ठीक है, लेकिन बाद में बंदे बहुत ज्यादा हो गए
1: तो खचा खचा हाल भर गया था आपको, वो जगह जो थी भर गई थी।
2: मैं बस 50-60% हो गए थे, लेकिन एक मकसद बात करने का है कि हमें कुछ सीखना चाहिए। जो बंदा सीखता नहीं है उसका कोई फायदा नहीं जिंदगी का। अगर कितना भी अमीर हो जाए, कितना भी उसके गाड़ियां मर्सिडीज हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन असूल नहीं है तो कुछ नहीं है। लिहाजा प्लीज मैं एक रिक्वेस्ट कर दी है, लेकिन किसी का दिल नहीं दिखाना था, लेकिन शायद किसी के बाद काम आ जाए। लिहाजा बहुत शुक्रिया राज साहब, मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता, आपका बहुत शुक्रिया
1: साहब। आप लोगों ने कामयाब प्रोग्राम किया, ये बड़ी खुशी की बात है। कम्युनिटी को देखना चाहिए कि मां साहब इस दफा तारीख में पहली दफा, पहले तो चंद लोग या 1-2 प्रोग्राम होते थे, इक्का दुक्का प्रोग्राम हुआ करता था 14 अगस्त का अम्बेसी के अलावा बाहर। अब मां साहब इस दफा तकरीबन 9 प्रोग्राम हुए 14 अगस्त के हवाले।
2: माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छा है ना ये, अच्छा है। जितने लोगों को करना चाहिए, देखो मुस्लिम जगहों पर पाकिस्तान के झंडा लगाया है, मुस्लिम लोगों जगहों पर मतलब पाकिस्तान का पता चला कि पाकिस्तान का डे है। मैं तो कह रहा हूँ घर घर मनाना चाहिए, कोई इसमें अर्ज नहीं बात रही है, हमें मनाना चाहिए। जिस दिन तौफीक है तो हम तो इंशाल्लाह हर साल मनाते हैं, चाहे लोग थोड़े हों या ज्यादा हों, लेकिन हम इंशाल्लाह हर रोज मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाल्लाह। दस बाबा का बहुत शुक्रिया
1: आपके, सब आप मुतवातर मना रहे हैं, अच्छी खासी तादाद होती है। मैं तो कहता हूँ जहाँ 7-8 मेहमान थे, 6 मेहमान थे, तो मैं पाकिस्तान का झंडा और केक की शक्ल में उनको हजारों की शक्ल में देखता हूँ।
2: थैंक यू वर्मा राज साहब का बहुत शुक्रिया, मैं आपके
1: बहुत शुक्रिया, रहा रहेगा। सामान नाज़रीन, ये थे मास्टर याकूब साहब। चूँकि ये उस्ताद हैं, इल्मी बात करते हैं, समझाने की बात करते हैं, तरबियत की बात करते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ख़ुद भी एहतियात करनी चाहिए और अपने असूलों पर भी कायम रहना है। सामान नाज़रीन हमारे साथ साथ रहिए, अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इंफॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह हमने इंट्रो में कहा था कि आज हमारे बहुत सारे मेहमान होंगे, चूंकि डेनमार्क की हिस्ट्री में 14 अगस्त के हवाले से, मैंगो फेस्टिवल के हवाले से जितने प्रोग्राम हुए, मेरी मालूमात के मुताबिक और ये कुछ 10-11 के करीब जो है 14 अगस्त के प्रोग्राम हुए। सुबह जो है वो पाकिस्तान अम्बेसी में हुआ 14 अगस्त वाले दिन, उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज़ का प्रोग्राम था, और उसके बाद जो है वो पाकिस्तान सोसाइटी का प्रोग्राम था। तीनों प्रोग्राम भी जो है वो अपनी अपनी नीयत के लिहाज से बड़े कामयाब प्रोग्राम थे। कोई थोड़ा छोटा, कोई थोड़ा बड़ा, कोई ज़्यादा बड़ा, इस तरह के उससे पहले भी बहुत सारे प्रोग्राम हुए जिसमें 6 बंदे थे या 7 बंदे थे, मेरी नज़र में वो भी सैकड़ों की तादाद में थे। तो इसी तरह मसाजिद में भी जुमे वाले दिन भी खुतबे भी हुए, उलमा हज़रात ने ये चीज़ों की तरफ जो है निशानदेही की 14 अगस्त के हवाले से, डेनिश ज़बान में भी बताया गया। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं वो साफ़ी बरादरी से उनका गहरा तल्लक है, लेकिन अपना अपना सियासी कद बोर जो है वो सियासत, कुछ सियासत करते हैं, कुछ कलम की सियासत करते हैं, ये जो हमारी टीम का कुछ हिस्सा होते हैं। इस वक्त हमारे साथ बुज़ुर्ग सहाफ़ी जनाब आजी असलम मेहर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें आपकी आवाज़ भी कहा जाता है, सबकी आवाज़ भी कहा जाता है, जो है साहिल के, जो साहिल के नाम से जाने वो पहचाने भी जाते हैं, अब मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी पहचाने जाते हैं, अपनी जमात के वो सेक्रेटरी जनरल भी हैं और अपना रिपोर्टिंग भी करते हैं, टीवी की रिपोर्ट भी करते हैं, तो बहुत हवालों से वो अपना किरदार अदा करते हैं। मेरी मुराद है राजपूत आसिफ साहब भी हमारे साथ। आजी साहब, आपको और आसिफ को खुश आमदीद कहते हैं।
2: शुक्रिया जनाब, सुनने वालों का
3: शुक्रिया।
1: आजी साहब, चूंकि आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग साफी हैं, आप ही से शुरू करते हैं, तो ये जो छोटी सी मैंने तमीद बांधी है टूटे फूटे अल्फाज में, आप किस तरह लेते हैं?
2: नहीं, अब आपने 35 साल से रेडियो की कमान संभाली हुई है और आपके रास्ते भी पूरे यूरोप में, यूरोपीय यूनियन में, पाकिस्तान में और दूर दराज के इलाकों तक आपकी आवाज पहुंच रही है। अब आप टूटी फूटी बात तो नहीं करते और बड़ी अच्छी बात करते हैं, लोगों को समझ आती है, और इंशाअल्लाह ताला हम इस रेडियो को बीबीसी रेडियो की तरह पूरी दुनिया में, कोने कोने में, गांव गांव में, करिया करिया में, ये लोग जंगलों में भी इसकी आवाज सुनेंगे वाईफाई के जरिए। बड़ी अच्छी आपने तमहीद बांधी। पहले तो ये है कि जी मैंगो फेस्टिवल इस दफा और यौम आजादी जिस जोश व खरोश के साथ, जिस तरह लोगों की नौजवान नस्लों ने, हमारी माओ ने, बहनों ने, बेटियों ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने शिरकत की है, मैं समझता हूँ कि यह शाह जंगीर का एक मेला लगता था ना, तो उस मेले की तरह जिधर भी नजर दौड़ाते थे तो जनाब यौम आजादी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। और बल्कि मुझे तो कुछ लोग ऐसे भी मिले, देखें हमारा सियासी पार्टी से कोई तल्लक नहीं, लेकिन जहां से भी अच्छी खुशबू, खबर, मालूमात

0: सही सलामत दे देता था, आप ही अपने ड्रामे रचा कर। अब दुनिया जो है सैटेलाइट और चांद पर बैठ गई है जाकर, वहां पर दूरबीने लग गई हैं। अगर दुश्मन अपनी कार्रवाई करके आपके माथे पर आपके गले में हाथ डालकर आपका प्रोपोगंडा करके आपको बदनाम करता था ना, तो अब ये पोल खुल गया है। अब उनको पता लग गया है कि अब हमारी ये हमारा सिक्का, ये हमारा झूठापन या पाकिस्तान को अपनी कार्रवाई करके बदनाम करने का सिलसिला रुक चुका है। तीनों ममालिक के पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, बड़ी ताकतों से आ गई है, तजारत होगी, दिफा होगा, टूरिस्ट आएंगे। आप यकीन जाने कि यूरोपीय यूनियन से ज्यादा तुर्की जो है वो बहुत ज्यादा डॉलर और ज़र मुबादला उन लोगों से कमाता, फिनलैंड से, नॉर्वे से, स्वीडन से, डेनमार्क से, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, पेरिस, इटली, स्पेन से। मैं इस्तांबुल में बाजार में बैठकर खाना खाया, मैंने लोगों को देखा ये लोग जाकर वहां पर कितना सरमाया खर्च करते। अब तीनों मुल्क जो हैं ये टूरिस्ट के जरिए अपनी मईशत को इतना इतना मजबूत करेंगे कि इनके खजाने सोने से भर जाएंगे। राजा साहब, हम वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेना छोड़ देंगे, एक बात तो ये है। और दूसरी जनाब, ये जो फेस्टिवल और यौम आजादी मनाया गया, मैंने यहाँ कुछ नाम लिखे थे आपके फोन से पहले कि यहाँ नसीम अहमद भी आए थे, सफीर राउफ खान भी, एतजाज हसन भी, मसरूर जुनेजो भी, फौजिया शहबाज भी, सैयद जुल्फकार गर्देजी भी, अहमद मुश्ताक साहब भी, और अब शोएब सरवर साहब हैं। इन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की जो मुस्लिम लीग नून ने वेलबी में मुनक्कद की थी 14 अगस्त को। उन्होंने बड़ी अच्छी तकरीर की, सफीर पाकिस्तान डेनमार्क इज्जत मुआब शोएब सरवर साहब ने, कि आपका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो, जमात सलामी से हो, वली खान से हो, मौलाना फजल रहमान से हो, नून से हो, काफ से हो, पीपल पार्टी से हो, किसी से भी हो, आपकी सोच, आपकी मोहब्बत मैंने शिरकत करके ये महसूस की है। अम्बेसडर साहब के अल्फाज थे, आप भी बैठे थे, मैं भी बैठा था और उनके साथी भी बैठे थे, कि मैंने एक ही चमक देखी है, एक ही जोश देखा है, एक ही जज्बा देखा है कि आप सब लोग किसी भी सियासी पार्टी में हो, सब पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। मैं राजपूत आसिफ साहब को माइक देता हूं।
1: अजी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आसिफ, आपने शाहजी साहब की बात सुनी और आप क्या कहेंगे?
2: जी राय साहब, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम। आसिफ, आपने आजी साहब की बात सुनी?
2: जी बिल्कुल, बात सुनी है।
1: अब उन्होंने माइक आपकी तरफ कर दिया है।
2: जी बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने आज हमें मुद्दू किया और जो फंक्शन हुए हैं इधर मुख्तलिफ, उनके बारे में इंशाल्लाह बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। ये देखें, ये आपको शील्ड नहीं मिली, ये पूरे मीडिया को मिली है। मीडिया का अतराफ किया गया है यहाँ पे बैसी की तरफ से, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और आपको भी मुबारकबाद देते हैं। इंशाल्लाह जैसे हमारा किरदार है मीडिया का यहाँ डेनमार्क में, आइंदा भी हम अपना किरदार अदा करते रहेंगे। क्योंकि शोएब साहब यहाँ पे, उन्होंने जिस तरह बताया कि इनका ये आखिरी साल है, तो उन्होंने जिस तरह मीडिया के साथ और कम्युनिटी के साथ वक्त गुजारा है, ये एक मिसाली है। इससे पहले भी आते रहे हैं, ये नहीं है कि हम कहेंगे कि उनकी कोई हम गलत बात करेंगे। इससे पहले भी सफीर पाकिस्तान आते रहे हैं, वो भी उनका भी तल्लक अच्छा रहा है, लेकिन उन्हें इन्होंने ज्यादा क्लोज होके मौजूदा जो हमारे सफीर पाकिस्तान जनाब शोएब सरवर साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है। मैं लोग इनकी तारीफ ही करेंगे, इनका याद रखेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा आते हैं सफीर हर साल, जहरी बात है उनका 3 साल बाद चेंजिंग होती है, लेकिन कुछ कुछ नाम ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, जिस तरह अभी असलम एर साहब ने नाम लिए मुख्तलिफ, कुछ ऐसे हैं जो इतना वो नहीं गुल मिल सकते, लेकिन कुछ ऐसे नाम होते हैं जो तारीख का हिस्सा बन जाते हैं। उनमें से मेरा, मैं समझता हूँ शोएब सरवर साहब भी हैं, इनकी हमें कदर करनी चाहिए, इनके ज्यादा से ज्यादा हमें जब इंशाल्लाह ये जाएंगे हम कोई ना कोई पार्टी भी रखेंगे, इनके आजाद में कम्युनिटी को रखनी भी चाहिए। बड़ा अच्छा। और राय साहब जो आज इस दफा फंक्शन हुए हैं 14 अगस्त के बारे में, अंबेसी में

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। साहब नाज़रीन, है वतन पाक वतन, ये आपने मिली नगमा सुना और उससे पहले आप बातें सुन रहे थे, बाकी जो हमारे मौजूद मेहमान थे। साहब नाज़रीन, 14 अगस्त के हवाले से, चूँकि हमारा नेशनल डे और दिन होता है, इसी तरह जिस तरह डेनमार्क का अपना नेशनल डे होता है, तो ये चूँकि लोकल हमारे प्रोग्राम होते हैं, सब लोग खुशी से बात करते हैं, अंदाज़ अपना अपना होता है और होना भी चाहिए हर आदमी को, चूँकि हम जमहूरी मुल्क में रहते हैं, हर किसी को हक है। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम हुए और सारे ही कामयाब प्रोग्राम थे अपने अपने तरीके से, तो हर प्रोग्राम की तारीफ़ करनी चाहिए। जो भी प्रोग्राम करता है उसके पीछे बड़ी मेहनत शामिल होती है, चाहे थोड़े बंदे हों चाहे ज़्यादा बंदे हों, लेकिन हर प्रोग्राम में मेहनत की जाती है। और सबसे खुशी की बात यह है कि सब प्रोग्रामों में किसी ने अपनी पार्टी का जो केक नहीं काटा, उन्होंने 14 अगस्त का केक काटा है। सबसे पॉजिटिव बात और खुशी की बात यह है कि सब जगहों पर केक काटेंगे और वही केक काटेंगे पाकिस्तान 14 अगस्त के हवाले से। और एम्बेसी में बड़ा फंक्शन हुआ और उसके बाद आखिरी पाकिस्तान सोसाइटी का फंक्शन हुआ, उसके बाद 14 अगस्त के प्रोग्राम ख़त्म हो गए। हमारे प्रोग्राम तो 12 महीने जारी रहते हैं इंफॉर्मेशन के हवाले से। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया एक नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, जो उन्होंने सबसे हमसे ज़्यादा पाकिस्तान को देखा कि वो थोड़े लेट आए थे और हम थोड़े पहले आए थे और हमसे कुछ लोग पहले आए थे, उनसे लोग कुछ पहले आए थे। जितना जितना कोई लोग देखता है उसको ज़्यादा चीज़ें याद आती है। मेरी मुराद है मनशा। मनशा, आपको खुश आमदीद कहते हैं अदार, आपकी आवाज़ पर एक बार फिर।
2: जी शुक्रिया राय साहब, आपका और आपके तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया।
1: मनशा, मैंने थोड़ी सी प्रोग्रामों की, हमने नहीं देखा प्रोग्रामों में आपको, 14 अगस्त वाले दिन भी नहीं देखा एम्बेसी में, आप हमेशा सबसे पेश पेश होते हैं।
2: जी राय साहब, मैं पाकिस्तान गया हुआ था समर वेकेशन के लिए और वापस आया हूँ मैं 10 अगस्त को, और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए मैं बहुत सारे प्रोग्राम मिस किए, लेकिन मैं प्रोग्रामों से वाकिफ रहा हूँ। यहाँ पर मेरे जाने के बाद भी डेनमार्क में इस दफा अगस्त के बहुत ज्यादा प्रोग्राम हुए, पाकिस्तान के हवाले से बहुत प्रोग्राम हुए, बहुत अच्छा लगा। मेले लगे, आमों के मेले लगे, और वो 14 अगस्त का जो प्रोग्राम बैसी में हुआ, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हुआ। उसके हवाले से आपको एक हमारी बैसी ने भी तारीख रकम की है, किसी को शील्ड दी है, तो वो खुश नसीब आप हैं, तो आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो जी, आपको बैसी ने शील्ड दी है
1: कारकर्दगी। आप लोग सब साथ का प्रोग्राम था, ये कम्युनिटी को शीट मिली है
2: जी। नहीं, आपकी जाती भी इसमें बहुत ज्यादा कारकर्दगी है जी, नुमाइंदगी है, तो इसके इसका बनता है आपका जी, डेनमार्क के लिए भी और मैसी के लिए भी आप चुने गए हैं, तो आपको बहुत बहुत मुबारक।
1: बहुत शुक्रिया मनशा, आपने हर चीज़ को, ज़ाहिर है पढ़े लिखे आप, नज़र रखते हैं हर चीज़ पे, और आप अल्लाह ताला आपको सेहत भी दे, आप हमेशा छुट्टियों पे जाते हैं और अब बच्चों के स्कूल भी शुरू हो गए हैं, पर बंदे की जिम्मेदारियाँ भी बढ़ जाती हैं, बच्चे बड़े हो गए, बड़ी क्लासों में बच्चे क्लास शुरू करते हैं, तो वो लोग होते हैं जो अपनी कम्युनिटी के कामों में हिस्सा लेते हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उनके भी बच्चे होते हैं, उनका भी फैमिली सिस्टम होता है। जो भी कम्युनिटी में थोड़ा मुतर्रक होता है सियासी लिहाज से, सोसाइटियों के लिहाज से, तो डेफिनेट हर चीज़ में मेहनत होती है मनशा
2: जी। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है राय साहब, आप देखिए ना जी, मेहनत का समर फल भी मिलता है, तो हमने देखा कि एम्बेसी का प्रोग्राम हुआ, बहुत बड़ा प्रोग्राम था, एम्बेसी में बहुत सारे लोग थे, मैंने वो लाइव देखा, तो उसके बाद आपको शील्ड मिलना हमारे लिए एजाज की बात है कि आपको भी शील्ड मिली, और बड़ी अच्छी खुशी हुई हमें। और उसके साथ साथ जो जितने भी यहाँ पर प्रोग्राम हुए, एल्बर्टा में प्रोग्राम हुआ, बेलारूस में प्रोग्राम हुए, स्कोवलन में प्रोग्राम हुआ, सब प्रोग्रामों से हम वाकिफ रहे, और इस दफा तो हमारी कम्युनिटी को बहुत सारे प्रोग्राम देखने का मौका मिला और लोगों ने बहुत एंजॉय किया। मौसम भी बहुत अच्छा था, गर्म था, आमों की बहार भी लगी रही, तो ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, ऐसे मेले लगने चाहिए कि लोगों को हमारे जो पाकिस्तान है उसकी कदर का भी एहसास हो, उसकी वैल्यू भी नजर आए, और तरीके और राग में वो देखें कि पाकिस्तान हमें कैसे मिला। तो उनको जागर करने के लिए आप जैसे लोग, सोसाइटी और जितनी भी कम्युनिटीज यहाँ पर हैं, प्रोग्राम करती हैं, सजाती हैं प्रोग्राम, तो बहुत अच्छा लगता है। हर प्रोग्राम में हम शामिल होते हैं, हमें दावतनामा मिल जाता है। दावतनामा मुझे अभी भी मिले थे, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान था फैमिली के साथ, मैं हर साल पाकिस्तान छुट्टियां गुजारता हूँ बच्चों के साथ, तो आते हुए बस आने से कुछ दिन पहले वो मेरी तबीयत कुछ खराब हुई, तो वहां पहुंचा हूं यहां पर,
1: तो आप ही तो आपने देखा है, आपकी एक्टिविटीज देखी हैं, आप भी फिर खाने में प्रेज नहीं करते, जगह जगह आप भी जाते रहे
2: जी। वो ऐसे था कि जी हम हर साल ही जाते हैं, तो खाने का तो जारी बात, दोस्त आए होते हैं जी, फिर दोस्तों को बुलाया, वो भी वेट करते हैं, तो सब मैंने भी शैया रखा हुआ था अपने फार्म हाउस के ऊपर, वहां पर भी मेरे पास भी 2 MNA, 3 MPA, 1 वजीर और काफी और भी लोग आए हुए थे, उनका मैंने भी शाहिया दिया और बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए और मैंने खुद भी प्रोग्राम बहुत सारे किए और मुलाकातें भी बहुत सारी हुई हैं। बड़ा अच्छा लगा इस दफा, बस आते हुए राय साहब वो आने से कुछ दिन पहले ही तो बस वो नजर लगे कह सकते हैं आप, ज्यादा प्रोग्राम में शामिल हो गए तो कोई तबीयत खराब होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अल्लाह ताला का शुक्र है बहुत बेहतर है। लेकिन पाकिस्तान में बहुत मजा आया, टूर बहुत अच्छा रहा।
1: मंशा आप देखें कि जो हमारे लोकल फनकार हैं, लोकल मीडिया है हमारा, और उसके बाद कोई बाहर से इस दफ़ा मेहमान नहीं आया, कोई वज़ीर नहीं आया, कोई बड़ी पर्सनैलिटी जिसे हम कहते हैं, प्रोग्रामों में सफ़ीर मोहतरम जाते रहे और बाकी जो तंजीमात या पार्टी थी उन्होंने अपने तरीके से प्रोग्राम किया तो सारे प्रोग्राम कामयाब हो गए। क्या खर्चे करके लोगों को बाहर से बुलाना, कोई मतलब कि आप इसको किस तरह देखते हैं?
2: मैं बिल्कुल आपकी जो बात है इससे इत्तेफाक करता हूँ कि बाहर से लोगों को बुला के उनके लिए गाड़ियों का बंदोबस्त, होटल का बंदोबस्त, खाने का बंदोबस्त और लहदा से टेंशन लो और हम पाकिस्तान जाएं तो वो पहचानते भी नहीं है, तो उनके लिए इतने खर्चे करने की जरूरत नहीं है। लोगों को एंटरटेन चाहिए, लोगों को प्रोग्राम चाहिए। आपने देखा कि अभी लगातार कितने प्रोग्राम हुए, सारे के सारे प्रोग्राम कामयाब हुए, लोगों ने भरपूर शिरकत की, लोगों ने अपनी नुमाइंदगी दिखाई वहां पर। इसका मतलब यह है कि लोगों को मौके चाहिए, लोगों को वो वाले जो पैसे वाले लोग नहीं चाहिए, चाहे वो कितनी भी पर्सनैलिटी हो, कोई आप समझ लें कि वजीर हो या कोई भी हो, लोगों को वो नहीं चाहिए, लोगों को एंटरटेन का मौका चाहिए। तो मौके फराहम किए गए तो देखें हर प्रोग्राम कामयाब रहा, उसमें कोई भी इतना वो नहीं था कि वो एक छोटे से वो गुलकारा थी वो इंग्लैंड से आई हुई थी, बाकी तो नॉर्मल प्रोग्राम था, लेकिन बहुत कामयाब प्रोग्राम था। ऐसे एल्बेसो में मैंने देखे प्रोग्राम 3-4 हुए और ऐसे बेलरूप में प्रोग्राम हुए, सब जगह प्रोग्राम हुए, कामयाब हुए। मैं नहीं समझता कि उन लोगों के ऊपर पैसे खर्च करने चाहिए, उनके ऊपर अपनी एनर्जी खर्च करनी चाहिए, उनके लिए अपने आप को ऐसे ही मुश्किल में डालना चाहिए। हमारे लोगों को खुद ही यही लोग आते हैं तो हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को ऐसे मेहमानों को बुला बुला कर खाने खिलाएं, खर्चे करें, पैसा जाया करें, वो इतनी ज्यादा उसकी अहमियत नहीं है।
1: बड़ी अच्छी बात की है मंशा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी सेहत का ख्याल रखें और इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे खुलकर बातें होंगी।
2: जी राय साहब, आपको दोबारा बहुत बहुत मुबारक हो और जितने भी प्रोग्राम हुए मैं अटेंड कर पाया नहीं कर पाया, सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत कामयाब प्रोग्राम हुए और उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में हम ये पाकिस्तान के लिए और भी अच्छे प्रोग्राम करेंगे। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी सेहत के लिए दुआ की, आप अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी।
1: सामान्य नाज़रीन, ये थे मियां मंशा जिनकी आपने बात सुनी। ये नौजवान हैं, अक्सर बोलते हैं, बोर्ड बोलते हैं और खुलकर बात करते हैं, पढ़े लिखे हैं, इसलिए सब नाज़रीन को पढ़े लिखा हर भी और भी बहुत सारे होते हैं। हर आदमी का बात करने का अपना अंदाज़ होता है, तरीक़ाकार होता है, रख रखाव होता है, टिकेट्स होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। सामान्य नाज़रीन, हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है, अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, आपको टाइम चाहिए तो आपके लिए अदर आपकी आवाज़ का टाइम हाजिर है, हमारे साथ साथ रहिएगा।
0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज़ है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
2: पाकिस्तान पाकिस्तान मोहब्बत का पैगाम, अमन का पैगाम। सामान नाज़रीन, ये मिला जुला प्रोग्राम है जो कम्युनिटी के लिए होता है, लोकल हमारी कम्युनिटी के लिए होता है। जो हमारी लोकल ख़बरें होती हैं उस पर बात की जाती है, अवामी शक्ल में बात की जाती है, गपशप की शक्ल में बात की जाती है, और ज़िम्मेदारान लोगों से बात की जाती है जिनका कम्युनिटी में हिस्सा होता है और असर रसूख होता है। ये लोग बैठते हैं और वहाँ बैठकर बातें करते हैं और इनकी बातों को नोट किया जाता है। जो बंद कमरे में बातें होती हैं उनको कोई नोट नहीं करता। जो कहीं बैठकर डिबेट करते हैं, खुले मैदान में करते हैं, हालों के अंदर करते हैं, अपनी जो कहते हैं जहाँ कोपेनहेगन की पार्लियामेंट होती है वहाँ बैठ के बातें करते हैं, उन बातों का बहुत असर होता है। और हमें इन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उन लोगों के जज्बात का, उनके ख्यालात का भी। उन पर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी चूंकि वहाँ पर उनका भी जो पार्लियामेंट होती है वो बंद कमरों में होती है, लेकिन वहाँ हर बंदे को जाने की इजाज़त होती है। वहाँ हम जाते भी नहीं हैं लेकिन फिर अपने बंद कमरों में बैठ कर वहाँ फिर बहुत सारी बातें करते हैं। ना वो हमने डिबेट सुनी होती है, वह ना हमने सुना होता है उन्होंने वहाँ क्या कहा, कौन सी तजावीज़ दी। तो सामने नाज़रीन, हमें इन चीज़ों पर भी नज़र रखनी चाहिए। जब आपको पता चले कोई डिबेट हो रही है तो टाइम निकाल कर वहाँ जाना भी चाहिए, उनकी भी हौसला अफजाई होती है। सामने नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो है वो डिप्टी मेयर साहब का डिप्टी मेयर और मौजूदा सिटी काउंसिल जो हैट्रिक मुकम्मल कर चुके हैं और बहुत सारी हर आपको उनको जहाँ भी आप जाएं, मस्जिद में जाएं, दूसरी महफल में जाएं, सियासी इतमाम में जाएं, 14 अगस्त के इतमाम में जाएं, तो हर जगह वहाँ मौजूद होते हैं। मेरी मुराद है सैयद एजाज हुसैन बुखारी शाह साहब, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और 14 अगस्त की मुबारक भी देते हैं।
3: जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। बहुत शुक्रिया राय साहब, जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक हो और आपको भी मुबारक हो।
2: शाह साहब, मैंने छोटी सी तमीद बांध दी है, इसमें कोई ऐसी चीज है तो उसकी तसदीक कर दें।
3: आपकी बात में मुझे तो कोई ऐसी काबिल एतराज बात मुझे नजर नहीं आई जिसको बंदा कहे जी कि ये सही नहीं है या गलत है, तो उसमें मैं तो नहीं समझता कि कोई ऐसी अमेंडमेंट की जरूरत है। आपने जो कहा है ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जहां पर लोग बैठते हैं उनका अपना एक दायरा इख्तियार होता है, अपना अपना डोमेन होता है। जो लोग पार्लियामेंट में हैं वो पार्लियामेंट से मुतालिका गुफ्तगू करते हैं, जो लोग कमून में हैं वो कमून

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सामाई नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। सामाई नाज़रीन, जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की फ़जाओं से मुस्लिम लीग काफ के सीनियर नायब जनाब अज़हर बेग साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बेग साहब, आपको कोपेनहेगन की फ़जाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: ये बड़ी मेहरबानी राय साहब, मेरी तरफ से सब डेनमार्क के रहने वालों को अस्सलाम वालेकुम और आपको भी।
1: वालेकुम सलाम। बेग साहब, आपकी मसरूफियात हमें मीडिया के जरिए तो पता चलती रहती हैं, तो आज कल क्या हो रहा है पाकिस्तान में, आपकी क्या मसरूफियात है?
2: देखिए जी, आजकल पंजाब के अंदर जो भी काम वगैरह, जो भी शाफे साहब ने जितने स्पेशली गुजरात के अंदर काम कराया, दूसरे जिलों में भी, पूरे पंजाब में वो वर्क कर रहे हैं, इतने बिजी होते हैं कि मुझे भी उनसे मिलने के लिए या दूसरे कुलीग को भी टाइम लेना पड़ता है, क्योंकि वो काफी मीटिंग एवरी डे, वो जब भी सुबह से लेकर रात तक, फिर घर में बैठ के भी वो लोगों को टाइम देते हैं, मुस्लिम लीग हाउस में भी टाइम देते हैं, तो सब लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। मसले मसाइल तो बहुत ज्यादा है लोगों के, और महंगाई का भी दौर है, तो ऊपर से ये बारिशों का मौसम है गुजरात में, स्पेशली वो सैलाब वगैरह का सिलसिला चल रहा है, उसमें भी ये दौरे वगैरह करते हैं, और जो हो सकता है इनको लोगों की मदद मदाद भी करते हैं, तो अपनी मिनिस्ट्री के हवाले से भी, दो मिनिस्ट्री है उनके हवाले से भी काम करते हैं। वैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग के लिए भी वो सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। मरकज में सालक साहब है, पंजाब में शाफे साहब है, और

0: लोग इनके साथ है, अल्लाह ताला इनको सेहत दे। तो बहुत अच्छा चल रहा है, अच्छा लग रहा है। इधर की पॉलिटिक्स, इधर की सियासत और उधर की सियासत जरा और तरीके की है, इधर जरा और तरीके की है। तो अच्छा है, वो सीख रहे हैं, तो अपने की आदत से सीखते रहेंगे इंशाल्लाह, जो वो बोलेंगे उनके मुताबिक काम करेंगे। जी
1: बेग साहब, आपकी मीटिंगें होती रहती हैं, ज़ाहिर है पार्टी की मीटिंगें चलती रहती हैं, जो अखबारात में भी मैं पढ़ता रहता हूँ कि और आजकल हर रोज़ आपकी कोई ना कोई मीटिंग होती है। तो यहाँ डेनमार्क में भी माशाल्लाह 14 अगस्त बड़ी धूमधाम से मनाया गया, पाकिस्तान एम्बेसी की बड़ी ज़बरदस्त तकरीब थी, और वहाँ बहुत
0: जी
1: सारी चीज़ों को इस दफ़ा शील्ड भी दी गई। 17 इम्तियाज़ भी जो है वो कोपनहेगन के शहरियों के हिस्से में है। आप भी कोपनहेगन के शहरी, आप क्या कहेंगे?
0: जी मेरी तरफ से तो मलक साहब को भी मुबारक हो। वो डेनमार्क में रहने वाले पाकिस्तानी एक बंदे को गवर्नमेंट पाकिस्तान वो अग्रेसर नवाज रही है, तो मैं खुशी होनी चाहिए, वो इस काबिल है। स्पेशली आपको भी उन्होंने शील्ड दी है, आपको भी मुबारक हो, और अल्लाह
1: शुक्रिया।
0: ताला आगे भी आपको तरक्की दे, और ऐसे ही चलते रहे हम सब मिलजुल के। तो खुशी होती है जब अपना, मेरा मुल्क तो डेनमार्क भी है, मेरे सारा आप लोग सारे बहन भाई हैं उधर हैं, तो आप लोगों का नाम लेता हूँ, बात बात पे कहता हूँ कि हम डेनमार्क के लिए कुछ करें, स्कैंडिनेविया के लिए कुछ करें, उधर के ओवरसीजों के लिए कुछ करें। वो कहते हैं इंशाल्लाह टाइम देंगे, करेंगे, और हम सब लोगों को साथ लेके चलेंगे। तो मेरी तो यही कोशिश है कि सब लोग अच्छे तरीके से, हम पाकिस्तान भी जब आए तो अच्छी सानियां पैदा हो हमारे लोगों के लिए, स्पेशली एयरपोर्ट पे, और स्पेशली जो थाना कचहरी का कल्चर है इसमें सानियां पैदा हो, जो लोगों के साथ ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ जो लोग सलूक करते हैं, मैंने खुद भी देखा है और लोगों से भी सुना है जी, बहुत ज्यादती करते हैं। तो इस पे वो मोहसिन नकवी साहब से भी वो कहते थे हम बात करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वो वजीरे दाखला है, उनके अंडर है इंतजामिया सारी पूरे पाकिस्तान की। अच्छा होगा, राम राम से ही होगा इंशाल्लाह। अभी 2-2.5 साल है तो चौधरी साहबान लगे हुए हैं, दोनों भाई सारे मिलजुल के कर रहे हैं, और पंजाब में स्पेशली इंशाल्लाह इनका काम नजर आ रहा है, गुजरात में तो नजर आया सबको, सड़कें बन गई हैं, सारा काम कंप्लीट हो रहा
1: ये
0: है। तो
1: बेग साहब, ये जो पानी नज़र आता है, ये पानी इतना ज़्यादा कहाँ से आ जाता है? हम भी रहे पाकिस्तान में, कभी इतना सड़कों पे पानी नज़र नहीं आता। या ये भी कोई एक आई आई मूवी बनती है जिसमें इतना बड़ा सैलाब दिखाया जाता है गलियों में?
0: नहीं, ये नेचुरल है, इसलिए कि ये बारिश का जो पानी था वो तो शाफे साहब ने क्लियर कर दिया, पहले 10-10 दिन वो पानी नीचे नहीं जाता था, अब अल्लाह का शुक्र है कि वो क्लियर है, पीछे रह जाता है। ये जो पानी आता है ये सैलाब का पानी कह ले, हमारे से कोई 15-20 किलोमीटर दूर है बल्लू खोखर, उसको कहते हैं गांव है, सड़क है, उधर से वो जो सैलाब आता है ना पानी, वो बन जो होता है वो तोड़ देते हैं लोग, वो शहर की तरफ पानी कर देते हैं, तो वो पानी जब शहर में आता है तो वो सैलाब की तरफ लोगों के घरों में सड़कों में वो पानी आके खड़ा हो जाता है, फिर गाड़ियां लगती हैं, फिर वो टाइम तो लगता है। पहले लोगों ने बोरियां गटरों में बोरियां डाल दी थी ना, जो इनको इनके साथ जो भी बातें लोग करते थे अपोजिशन वाले, आपको भी पता है मुखालफत जब होती है तो ऐसे प्रोग्राम वो लोगों ने बंदे छोड़े होते हैं जो इनके खिलाफ काम करते हैं, ऐसे घटिया काम है ये, जो लोगों को तकलीफ देते हैं, बंदों का नुकसान करते हैं घरों
1: बेग
0: का।
1: साहब, आपने ये
0: जी
1: बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि लोग गटरों में बोरियां दे देते हैं अपनी मुखालफत में, ये तो कम्युनिटी को नुकसान होता है।
0: ये तो सबको पता है कि ऐसे ही करते हैं, ये जलालत करते रहे हैं, अब नहीं होगी, अब तो बहुत, ये मरियम नवाज ने भी इस पे एक्शन लिया है, गटर सिस्टम है, गटरों के ढक्कन ले जाते हैं, और जो पुल के ऊपर वो सारी जंगला वगैरह लोहे का होता है वो काट के ले जाते हैं, बंदे भी ने अपने आप को दुरुस्त करते हैं।
1: बेग साहब, आपको मौका मिलता रहता है लीडरान से मिलने का, तो चौधरी शाफे और जो दोनों भाई जो हैं वो बड़ा मेहनत कर रहे हैं, हमारे ओवरसीज के जो वज़ीर हैं वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, आप सब आपका मिलना जुलना रहता है, तो आप खुद ओवरसीज के मसाइल सबसे बेहतर कौन जानता है आपके?
0: जी जी
1: तो इन
0: नहीं, हम
1: मसा
0: इंशाल्लाह जो हमारी मीटिंग हो रही है ना वो सालक साहब के साथ होगी, स्पेशली ओवरसीयर पाकिस्तानियों के लिए। तो उसमें शाफे साहब का, मेरी कोशिश है स्कैंडिनेविया में, स्पेशली डेनमार्क में वो आए, और आएंगे इंशाल्लाह, और पहला इंटरव्यू भी आपके साथ करेंगे आने से पहले भी, और मंगल वाले दिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग पंजाब में आम लीडर्स ब्रांड से आपका बात भी मैं कराऊंगा और मीटिंग भी दिखाऊंगा लाइव, और जो भी हमारा प्रोग्राम होगा वो मेरी कोशिश होगी कि मेरे कोपनहेगन के लोग देखे, मुझे ना देखे, इनके काम देखे, चौधरी शाफे साहब के काम देखे, सालक साहब के काम देखे, और ये कर रहे हैं इंशाल्लाह, और आगे भी करेंगे। और जो भी मसले मसाइल है डेनमार्क के अंदर लोगों को, जो भी किसी फैमिली को कुछ जमीन का है या कोई वैसे, ये पर्चे वगैरह जाली लोग करा देते आजकल तंग करने के लिए, या और भी कोई मसले मसाइल है तो वो मुझे बताएं, आपको बता दे, किसी और को बता दे, वो इन तक पहुंच जाएंगे और ये एक्शन लेंगे इंशाल्लाह, लेते हैं नोटिस लेते हैं। मैंने ये शाफे में देखा है, सालक साहब ने देखा है कि ये नोटिस लेते हैं, ये झूठ के खिलाफ बोलते हैं, बात सच्ची हो और ये उस बंदे के साथ खड़े हो जाते हैं। बकाया हमारी आपस की लड़ाइयों में छोटी मोटी, मैं ऐसे हूँ मैं ऐसे हूँ, मेरे लिए सारे काबिले इज्जत है जो उधर बैठे हैं, मैं आप लोगों में से हूँ, मैं उधर ही आना है। ये आनी जानी चीजें होती हैं, ये सीटें, ये ओहदे, ये कोई मायने नहीं रखते। इंसान का अखलाक प्यार और असद जायलस मुनाफ्त जो है ये अच्छी बात नहीं।
1: बेग साहब,
0: मैं इधर
1: हमने
0: बैठा
1: देखा आपका ऑफिस बड़ा खूबसूरत है, लोग अपने मसाइल लेकर आते हैं, पीछे बड़ी खूबसूरत आपने तस्वीर भी लगाई हुई है अल्लामा इकबाल साहब की, बाकी कायदे आजम की तस्वीर भी हमने देखी है। लोग साहिल आपकी आपके पास आते हैं तो जाहिर है आप एक पोस्ट पे बैठे हुए आम बंदे तो नहीं आप रह गए पंजाब में, अगर सीनियर नायब सदर हैं तो कुछ छोटी पोस्ट तो नहीं है ये।
0: देखिए जी, ये जो मेरे सुनने वाले हैं ये भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये पंजाब कितना बड़ा, 13 करोड़ आबादी का पंजाब है, और किधर सिंध से, सिंध के पास से शुरू होता है वो उधर जाता है पिशावर तक, पिशावर से आगे जाता है, तो लोग आते हैं इनके पास, बहुत बड़ी पार्टी है माशाल्लाह, चारे सूबों में इसकी नुमाइंदगी है, आप चेक करा लें, और लोग हमारे पास आते हैं जो पंजाब के रहने वाले हैं, और प्रॉपर हम टाइम देते हैं, उनके मसले मसाइल सुनते हैं, और हमने अपने कायदीन को बताते हैं जी ये मुल्तान से आए हैं, 14 अगस्त को ये सारा पंजाब के लोग, लेडीज और जेंट्स सब आए हुए थे, और शाफे साहब ने सारा दिन, मैं साथ था, उन्होंने टाइम दिया, तमाम चैनल वाले उधर थे, ARY, जियो, 42, ये जितने रंग टीवी दुनिया सारे थे उधर, अच्छा टाइम गुजरा है, सब खुश थे, और स्पेशली उन्होंने बोला था कि जो ओवरसीर है उनके जो भी मसले मसाइल है वो बताएं, अब इंशाल्लाह ये नहीं है कि वो यूरोप के लोग हैं, वो सऊदी अरब के होंगे, दुबई के, कुवैत के, जिधर कतर के, वो कहते हैं हम काम करेंगे, तो वो करते हैं, और कोई भी काम हो आप लोग, आप भी शाफे साहब के साथ टाइम लेके आप उनका, मैं कोशिश करूंगा कि महीने में एक दफा या दो दफा आप संडे को वो 10 मिनट या 5 मिनट या 20 मिनट वो देंगे, ये वादा है मेरा, मैं करवाऊंगा, इंटरव्यू करवाऊंगा उनका। मैंने उनको पहले भी बोला था जब कोपनहेगन में था, तो मैंने बोला शाफी साहब इनको टाइम दे, रहा साहब को टाइम दे, मीडिया को टाइम दे, लोग इनको सब सुनते हैं, तमाम पाकिस्तानी इनको सुनते हैं, इनको पसंद करते हैं, तो वो कहते थे आपके मैं दूंगा टाइम, इंशाल्लाह मैं, आप खुद भी उनसे बात कर सकते हैं, और कोपनहेगन के जो भी मसले मसाइल हैं, पहले डबल नेशनैलिटी का था वो भी हम आपके साथ खड़े थे, याद है बहुत साल सब ने सिग्नेचर करके दिए, और हम अम्बेसी में जाते थे, पीछे भी शोर शराबा डालते थे कि सबको मिल रही है, डेनमार्क को भी दे, तो अल्लाह ने किया तो वो मिल गई। अब PIA का मसला है, तो वो भी अल्लाह करे, सब मेरे से समझदार बैठे हैं उधर, उनके बहुत अच्छे है, सारा सुख तल्लक है पीछे, तो मैं इसलिए खामोश भी रहता हूँ, तो मैं कहता हूँ
1: نہیں بیگ صاحب، چونکہ آپ وہاں موجود ہیں، آپ پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، آپ پارٹی کے سینئر نائب صدور صدر ہیں، تو آپ کی بات چیت چلتی رہتی ہے، تو لیڈران کو بولے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پی اے اے کا ہونا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے، پرافٹیبل جو ہے وہ یہ اسٹیشن ہے، یہاں سے بہت زیادہ پرافٹ ہوتا ہے، زر مبادلہ جاتا ہے، تو بیگ صاحب انشاءاللہ یہ پروگرام لائیو کریں گے اور شافی صاحب سے وہ ساری چیزیں جو ہیں کھل کر بھی ڈسکس کریں گے، آپ بھی ڈسکس کریں چونکہ آپ ہر وقت ساتھ ہوتے ہیں۔
0: جی میں ان کو کہتا ہوں کہ ڈنمارک کے اندر رہنے والا کوئی بھی اوور سیئر ہے، وہ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ گجرات کا بندہ ہے جی، یہ میرے حلقے کا بندہ ہے تو یہ میرے ساتھ بات کر سکتا ہے، نہیں، جو بھی گجرات پنجاب کا رہنے والا بندہ ہے، چاہے پاکستان کا رہنے والا ہے، جو بھی کسی کو میرے ساتھ کام ہے میں انشاءاللہ اس کا کام کروں گا، یہ شافی صاحب کہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ روٹین کے مطابق ہر بندہ جو چاہے ان کے ساتھ بات کرے، جو بھی مسئلہ مسائل ہے بتائے ان کو، اور جو بھی شکوہ گلہ شکایت پارٹی کے ساتھ ہے، قائدین کے ساتھ ہے، چاہے میرے ساتھ ہے، وہ شافی صاحب کو ڈائریکٹ بولے یہ بات ہے جی، ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، وہ پارٹی لیول کی بات ہو، چاہے ویسے کسی کو، کسی پولیس والے سے، کسی مجسٹریٹ سے، کسی تحصیلدار سے، کسی پٹواری سے کوئی شکوہ شکایت ہے تو وہ شکایت درج کرتا ہے، تو وہ سیل تو مریم نواز کا بنا ہوا ہے، مگر وہ سیل ان کے ساتھ بھی کام کرتا ہے، ان کی بھی شکایت وہ جاتی ہے فوری طور پہ، تو جو بھی کسی کا کام ہے وہ بتائیں ان کو، اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ ہمارے شہر کے ہیں، وہ چوہی شجاعت صاحب کے بیٹے ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔
1: بیگ صاحب آپ کا قیمتی ٹائم ہے، آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، یہ جو بلدیات کا بن گئی ہیں، یونین کونسلیں بن گئی ہیں، کوئی ادھر کوئی رائٹ کوئی لیفٹ یا آگے پیچھے ہو گیا سارا سسٹم، آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟
0: نہیں نہیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ کا فتح ہوگی، اور یہ ضلع گجرات نہیں ہے، دوسرے ضلعوں میں بھی انشاءاللہ سیٹیں لیں گے اس دفعہ، اور ہمارے چیئرمین بنیں گے انشاءاللہ، میئر بنیں گے، ہماری کوشش ہے، ہماری قیادت نے کام کیا ہے، 26 ارب روپیہ ادھر لگایا ہے انہوں نے گجرات کے اندر، یہ تو لوگ خوش ہیں، آپ آ کے وزٹ کریں، لوگ خوش ہیں، ان کے اوپر اسپتالوں کی کنڈیشن جو ہے وہ بہتر کی ہے، لوگوں کے مسئلے مسائل سنتے ہیں، ہر ویکینڈ کو ادھر آتے ہیں، 2 دن ادھر دیتے ہیں، اسپیشلی ٹیمیں لگائی ہوئی ہیں، ادھر ان کے نمائندے ہیں تو وہ بھی کام کرتے ہیں، دیانتدار ہیں، سیکٹری ان کے بہت اچھے لوگ ہیں، آپ کسی سے چیک کروا لیں کہ گجرات کے اندر شافی صاحب سالک صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں، انتظامیہ تعاون کرتی ہے، بہت زیادہ تعاون کرتی ہے، کسی کو کوئی شکوہ گلہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھی کوئی یہ کر کے وہ کر کے، نہیں نہیں بہت امن ہے گجرات کے اندر ماشاءاللہ، اور ایسے ہی افزا آباد، سیالکوٹ، گجراوالا، جو بھی ڈویژن کے اندر جتنے ضلع آتے ہیں، انشاءاللہ ان میں ہم فتح ہماری ہوگی، ہم نے کام کیا ہے، کام نظر آ رہے ہیں، اور ہم بھی ادھر بیٹھتے ہیں دفتر میں، لوگ آتے ہیں تمام سے، پنجاب سے، ضلعوں سے، اور بہت اچھی رزلٹ آئیں گے، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔
1: بیگ صاحب آپ کا بہت شکریہ، حافظ صاحب کو سلام دیجئے گا، جو آپ کا میڈیا سیل ہے اور راجہ صاحب ہے ان کو سلام دیجئے گا، اور اپنا خیال رکھیے گا۔
0: تھینک یو سر، تمام سننے والوں کو شکریہ، اللہ۔
1: سامعین ناظرین، یہ تھے مرزا اظہر بیگ صاحب، جو کہ پاکستان کی فضاؤں سے بات کر رہے تھے، اور ساری باتیں آپ نے خود سن لیں، تو جب آپ نے خود سن لی، آپ کو سب کو انہوں نے کہا کہ آپ خود ڈائریکٹ بھی فون کیا کریں، ڈائریکٹ ان سے بات کیا کریں، کوئی شکایت ہو تو آپ خود بتا دیا کریں، اور ہمارا بھی ذکر کر رہے تھے، ہمیں بھی بتا دیا کہ سامعین ہم تو کمیونٹی کے مسائل جہاں جہاں ہوتے ہیں اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم کوئی اکلے کل نہیں ہیں، نہ ہی ہم کوئی پولیس مین ہے جو ہم کو جو ہے ڈنڈے کے زور پر کام کرتے ہیں، ہمارا کام ہے اپنے سامعین، جو ہمارے سامعین ہیں ان کو انفارمیشن دینا، یہی ہمارا کام ہے، انشاءاللہ ہم اپنا کام کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے، سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बस सामान, जैसा कि आप सबको मालूम है कि आजकल डेनमार्क में मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, हर एक का अपना स्टाइल है। मजर सामाइन, एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं, तो मजर सामाइन इस वक्त वो अपने ख्यालात का इजहार मौजूदा इशू पर करना चाहते हैं। आइए मजर सामाइन सुनते हैं कि याकूब जान में तरजई क्या कहते हैं।
2: अस्सलाम वालेकुम मजर सामाइन, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने याद किया और रेडियो आपकी आवाज़ पे मेरे खैरियत और मेरी गैरहाजिरी का सबब पूछते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने भी आप लोगों को भूला नहीं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस वक्त जो दुनिया में और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो फिज़ा बनाई है इन्होंने, ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। हालांकि देखा जाए मुसलमान एक पीसफुल मज़हब है, रवादारी का मज़हब है और मुसलमानों ने हमेशा बहुत सारी बातों को दरगुजर किया है, लेकिन गैर मुस्लिम मज़हब हमेशा की तरह मुसलमानों को मजबूर कर रहा है कि तुम लोग जोश में आकर कोई ऐसा काम करो जिससे हम दुनिया में साबित कर सके कि मुसलमान तशद्दुद पसंद मज़हब है। हालांकि मामला इसके बिल्कुल बरअक्स है, मुसलमान बिल्कुल अमन पसंद है। अब इन सारी बातों को गौर से देखा जाए तो इब्तिदा इन्होंने की है, यूलैंड पोस्ट वालों ने कार्टून छाप करके मुसलमानों की दिल आज़ारी की है। उससे भी यहाँ के मुसलमानों ने बहुत तामुल से काम लिया, सिर्फ़ और सिर्फ पीसफुल तरीके से एहतजाज करते आए। अब इन्होंने देखा कि मुसलमान तो बहुत ही अमन पसंदी से काम ले रहे हैं, कोई तशद्दुद कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं। फिर एक और गलती जो यहाँ के वज़ीर आज़म साहब ने की, एक और ज़्यादती की कि 11 मुल्कों के एम्बेसडरों ने इनसे मिलने को कहा, लेकिन वज़ीर आज़म साहब ने इनसे मिलना गवारा नहीं किया। मुआज़रत तो बहुत दूर की बात है, मिलना भी नहीं चाहा। तो इस तरह की गलतियां इससे पहले भी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों को के जज्बात को ठेस पहुंचाने के लिए, एक दफ़ा आप लोगों को याद है हॉलैंड के उस एक्ट्रेस को डेनमार्क बुलाकर बाकायदा टीवी पर एक घंटे तक उससे इंटरव्यू लेते रहे और इस्लाम के ख़िलाफ़ उससे जहर उगलते रहे। ये वो एक्ट्रेस थी जिसने हॉलैंड में फिल्म बनाई थी और जिसम पर कुरानी आयतें लिखी थी, और उस फिल्म के डायरेक्टर को हॉलैंड में किसी ने कत्ल भी कर दिया था। तो उन्होंने यहाँ के मुसलमानों को ठेस पहुँचाने के लिए यहाँ के टीवी पर एक घंटा मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोलती रही। फिर इस वज़ीर आज़म ने VIP प्रोटोकॉल दिया था उस एक्ट्रेस को और एक मेडल दिया था। तो ये सब क्या है, ये सब एक साजिश है। हम मुसलमानों को बहुत एहतियात करनी चाहिए, इनके साजिशों से होशियार रहना चाहिए, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिसको ये लोग जवाब बना कर एक इशू बना कर घर घर तलाशी शुरू कर दें, या जिसको भी अंदर करना चाहे या जिसको भी मुल्क से बदर करना चाहे, इस जवाब के तहत ये लोग हमारा जीवन हराम कर देंगे। हालांकि हम लोगों ने या हम मुसलमानों ने इस मुल्क को तरक्की की तरफ बढ़ाया है। अभी पता चला है कि मुस्लिम ममालिक में ये लोग बिलियन एंड बिलियन करोड़ों का माल बेचते हैं। ये मार्केट इनको कहां से मिल गई, ये तो हमारे ही मुसलमानों ने अपने अपने मुल्कों में इनकी ये चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई और इनको घर बैठे बैठे इतनी बिजनेस मिल गई कि ये लोग पागल हो गए। और पिया क्यास्को कहती है कि मुसलमानों को यहाँ से निकाल दिया जाए। चलो आपकी बात मान लेते हैं, इन सब मुसलमानों को अपने अपने मुल्कों में भेज देते हैं, और अगर इन मुसलमानों के मुल्कों ने इन चीज़ों का बायकॉट कर दिया था जो मिलियन एंड मिलियन के हिसाब से आप लोग उससे पैसे कमा रहे हैं, तो पिया क्यास्को से पूछे क्या ये सब चीज़ें डेंस के फोल्क पार्टी वाले खरीदेंगे। पिया क्यास्को को बता दे डेनमार्क ने जो तरक्की की है وہ ڈنس کے فال کے فارٹی سے نہیں کیے بلکہ انہی انواندا لوگوں کے توسط سے یہ ترقی ہوئی ہے. پھر بھی یہ لوگ انواندا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. جتنا ہم لوگ انٹیگریٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ کوئی نہ کوئی ایشو کھڑا کر کے ہم کو پھر پیچھے دھکیل دیتے ہیں. ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے اپنے حق جمہوری طریقے سے حاصل کرنا چاہیے اور قانون کا احترام کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے. پاکستان پائندہ باد.
3: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: म्यूजिक की सोच की और आपकी आपकी आवाज आपकी आवाज।
1: लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है। मैंने देखा है कि जब मेरी जबान डोलती है, शायरी सच बोलती है।

0: म्यूजिक की, सोच की और आपकी आपकी आवाज, आपकी आवाज।
1: गजल पेशी खिदमत है हसरत मुहानी की।